हर आपे कान उपायदा मेरे गोविंदा, हर आपे गोपी खोजी जियो, हर आपे सब कड़ भोगदा मेरे गोविंदा, आपे रसिया भोगी जियो, हर सो जानना भुली।

मन शीतल भये, जन्म जन्म के किलभग गए, सरबन दान पेखे मन माहे, अब ढूंढन काहे को जाहे, प्रभ अपने जा पय दयाल, पूर्ण होई सेवक काल, बंधन काट की अपने दास, सेमर सेमर सेमर गुणतास, एको मन एको सब डाय, पूर्ण पूरे ओ सब जाय, गुर पूरे सा परम चुकाया, हर सिमरत नांग सुख पाया, गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा, अगले मुझसे पाछे परे, जो उबरे से बंद लग खरे, ये तंदे मैं ओ लपटाए, उन ते दुगुन दड़ी उनमाए, ओ बेला का चीत न आवे, बिन सजाए ताहू लपटावे रखाओ, आशा बंदी मूर्ख देहे, काम क्रोध लपटे स्नेह, सिर ऊपर ठांडो थरमराए, मीठी कर कर विख आखाए, हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पोम कौन काले पैर, हौ पंडित हौ चर सियाणा, करने हारना बुझे बिगाना, अपनी गत में आपे जाने, क्या को कहे क्या आख बकाने, जित जित लाभ है तित तित लगना, अपना भला सबका।

चाखे सार जागत होए रहे बिस्मार अमर तरना पियो प्यारी एर सराती हुए त्रिवतारी हरहाओ हे देवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हार हर हर त्याओ आन सुनिए कत हो जाइये सा संत बड़ भागी पाईये आड़ पर जेवे आराध पार ब्रह्म ठाकुर आगाध ईगा उवा सदा सुहेली हर गुण गावत रसन अमोली अनंत मोली फल फुल पेडे इरस राती बोर न छोड़े आन रस कस लवे न लाई कौ नानक पुर पय है सगाई गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंजवां मन मंदिर तन सजी बार एसी मध्य बस्ते पार एसी पीतर सुनी साहो तन व्यापारी जाका उआ विसाहो नाम रतन को ब्योहारी अमृत

है मेरा गहना, तुझ निपुण जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब, तू मेरे खान। रहाओ जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तो ही मुझे करना। जय पेखो ता तू बसना, निरपो नाज पोतरा रसना। तू मेरी नवर तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुरते पाया। सागुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी गुआरे री मोहल्ला पनवा, व्याप्त हर सोग विस्तार। व्याप्त सुरग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पेख शोभा। मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संजीवे प्र ओढ़ तुम्हारी रघाओ। व्याप्त अंगबुद का माता, व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता। व्याध हस्त कोड़े अर बस्ता, व्याप्त रूप जोवन मद मस्ता। व्याप्त भूम रंग अरंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा। व्याप्त सेज महल सीगार, पंच दूत व्याप्त अंधियार। व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा। आचार व्यवहार व्याप्त ए जात, सब व्याप्त बिना रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको खां व्यापे माए। ओ नानक जन तूर संत पाई, ताके निटन आवे माई। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा, नैनो नींद हर दिट विकार। श्रमण सोए सुनंद विचार, रसना सोई लो मीठे साध। मन सोया माया विस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे। सावत वस्त को अपनी लय रहाओ, सकल सहेली अपने रसमाती। गए अपने की खबर न जाती, मुस्तनहार पंच बटवारे। तूने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई। उनते राखे मीत न पाई, सर्व सियाणप ना ओए रहते। साध संग ओए दुष्टवास होते, हर कृपा मुझे सारंग पान। संतन तूर सर्वनधान, साध पूजनी सदगुर संग।

मिटे कलेस सुखी होए रही है। ऐसा दाता सतगुर कहिए, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, रहाओ जिस होए दयाल आप मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाण।

की पाई, सोग सहज सांत आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, नाम रास सासंग खाटी, कहो नानक प्रभ अवधा काटी, गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत सा मिटे कलेस, चरण कम मन में प्रवेश, उचरो राम नाम लख बारी, अमृत रह पीओ प्यारी रखाओ, सोग सहज रसमह आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, काम क्रोध लो मद खोए, साध के संग किलब सब थोए, हर कृपा प्रभु दीन दयाला, नानक दीजे सादर वाला, गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पहने खाए, इस आर्स क्यों बने माए, खमसार आन कम लागे, हौडी बदले रतन त्याग गए रखाओ, प्रभु त्याग लागत अन लोभा, दास सलाम करत का शोभा,

मनमय ध्यान सगल तीर्थ मज्जन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोड़ जन्म की मल ले जाई रखाओ हर की कथा हृदय बसाई

शरण परे प्रभ अंतरजामी, नान कोट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा। हर सिंह राते पाए ना जले, हर सिंह राते माया नहीं चले, हर सिंह राते नहीं डूबे जला, हर सिंह राते सुभल फला, सप मिटे तुम्हारे नाय, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर सिंह राते मिटे सब चिंता, हर स्यों सो रचे।

चला तू संग हमारे बाह जियो रहाओ। खुद बिन करी ना जीवना रग रहना संसार। जी प्राण सुख दातया निमक निमक बलिहार जी। हस आलम्बन देव प्रभ घर तो उदर गोपाल। मोय निर्गुण मत थोरिया तू सदगी दीन दयाल। क्या सुख तेरे समला हवन विधि विचार। शरण समाई दास हित ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महार समाहे। तो प्रसन्न पै केसवा से जन हर गुण गाहे। माल पिता सुध बंद को तू मेरे प्राण आधार। सा संग नानक भजे फिर तरिया संसार। गौड़ी बैरागन रहोए के शंत के कर महला पंजवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हय कोई राम प्यारो गावे। सर्व कल्याण सुख सुध पावे हरहाओ। बन मन खोजत फिरत बैरागी बिरले काहू एक लिव लागी। जिन घर पाया से वडभागी ब्रह्मादिक सनकादिक चाहे। योगी जति सिद्ध अर आहे जिसे प्राप्त तो हर गुण गाहे। ताकि सरंजन बिसर तनाही वडभागी हर संत मिलाही। जन्म मरण

एक मैल गरीब बानो, एक मैल तू पंडित भगता, एक मैल खल होता, एक मैल तू सब कुछ ग्राहज, एक मैल कछु न लेता, ताड़ की पुत्री कहाँ करे बपरी, खिलावन खा रोजाने, जैसा पेक करावे बाजीगर, ओ तैसो ही साजयाने, अंग कोठरी बहुत पद करिया, आप हुआ रखवारा, जैसे मैल राखे तैसे रहना, क्या यो करे बेचारा, जिन किस किया सो ही जाने, जिन ए सब साजी, कहो नानक अपरम परस्वामी, कीमते अपने काजी, गौड़ी महला पनवा, छोड़ छोड़ रे बिखिया के रसुआ, उर्ज रहो रे बावर गावर, जो किरखे खरे आयो पसुआ रगाओ, जो जाने तू अपने काज, तो संग न चाले तेरे तसुआ, नांगो आयो नांग सदासी, फेर फिर अरकाल गरसुआ, पेख पेख रे कसुम की लीला, राजमाच तिन हूं लो हसुआ, शीत डोर दिन सारैनी, जी को काज न कीनो कछुआ, करत करत एही बरधानो, हार उते तन की नसुआ, जो मोयो उन मोहनी बाला, उसते कटे नहीं रोज चसुआ, जग ऐसा मोय गुरे दिखायो, तो शरण पर्यो तय गर्भसुआ, मार प्रो को संत बतायो, दृढ़ी नानक दास भगत घर जसुआ, गौड़ी मोहल्ला पंजवा, तुझ बिन कमन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण अधारा रगाओ, अंतर की बेद तुम ही जानी, तुम ही सजन सुहेले, सरसुका मैं तुते पाए, मेरे ठाकुर अगे अतोले, वर्ण न साको तुम रे रंगा, गुण दान सुखदाते, अमे गोत्र प्रव अविनाशी, पूरे गुर ते जाते, प्रांपो काड किए ने केवल, जपते हो मैं मारी, जन्म मरण को चूको सहसा, साध संग दरसारी, चरण पखार करो गुरसेवा, बार जब लखबरिया, जे प्रसाद यो पोजल तरिया, जन नानक प्रेसंग मिरिया, गौड़ी महला पनवा, तुझ बिन कमरी जावे तो ही, तेरो रूप सगल देख मोही रगाओ, स्वर्ग पयाल मृत भू मंडल, सर्व समानो एक ओही, शिव करत सगल कर जोरे, सरमया ठाकर तेरी दोही, पातक पावन ठाकुर नाम तुमरा, सुखदाई निर्मल सीत लोही, ज्ञान क्या नानक वडे आई, संत तेरे सो गाल गलोही, गौड़ी महला पनवा, मिलो प्यारे जिया, प्रभु किया तुम्हारा थिया रगाओ, अनग जोन बोझो नहीं प्रमया, बौर बौर दुख पाया, तुमरी कृपा ते मान खुदे पाई है, देहो दर्श घर राया, सोई हुआ जो पाना, अवर न किन ही कीता, तुमरे पाने परम होया, जागत न ही सूता, बिनो सुनो तुम प्राण पर प्यारे, कृपा निध दयाला, राख लेहो पिता प्रमेरे, अनाथे कर प्रतपाला, जिसनु तुम्हें दिखायो दर्शन, सा संगत कै पाछे, कर कृपा तूर दियो संतन की,

अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निध नहीं गाया मान बिखे ही मैं लुजी गए जाको रे कृपा करे जीवत सोई मरे।

तैयो गुर गुर सच्चा सिरजनहार गुर तुठे सब किछ पाया जन नानक सद बलिहार गौड़ी माज महला पंजवां हर राम राम राम रामा।

त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक यो खेल कठिन है, किन्हु गुरमुख जाना, गौड़ी महला नावा, साधो रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थिर मन, अचरज लख्यो ना जाई रहाओ, काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूर्त बिसराई, झूठा तान साचा कर मान्यो, जो सुपना रहे नाई, जो दिसै सो सगल बिनस, जो बादर की शाई, जन नानक जग जान्यो मिथया, रहो राम सरनाई, गौड़ी महला नामा, प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, आहे निस मगन रहे माया में, तो कैसे गुण गावे रहाओ, पूत मीत माया ममता स्यों, हे बिद आप बंधावे, मृत्यु न जो चू

तो एव मन गयो न जाई चंचल तृष्णा संग बस्त है याते थिर न रहाई रहाव कठन क्रोध कट ही के पीतर जे शुद्ध सब सराई रतन ज्ञान सब को हर लीना तस कछ न बसाई योगी जतन करत सब हारे गुनी रहे गुन गाई जन नानक हर भय दयाला तौ सबिद बन आई गौड़ी महला नामा साधो गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काए गवाव और हाओ पतत पुनीत दीन बंद हर शरण ताए तुम आओ गाय को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसराव ताज अभमान मोह माया फोन भजन राम चित को माई उले ओ मन समझाए वेद पुराण साल मग सुनकर निमखन हर गुण गावे रखाओ दुर्लभ दे पाए मानस की बिरथा जन्म सिरावे माया मोह महासंकट बान तास्यो रुच उपजावे अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो निहो न लावे नानक मुक्त ताए तुम मानो जे कड राम सुमावे गौड़ी महला नावा साधो राम शरण बिसरामा वेद पुराण पढ़े को ए गुण।

देखो सोच बिचारी रतन जन्म अपनो तेहारियो गोविंद गित नहीं जानी निमख न लीन पयो चरणन स्यों बिरथ औध सिरानी कहो नानक सोई नर सुहिया राम नाम गुण गावे और सगल जग माया मोहया निर्भय पद नहीं पावे गौड़ी महला नावा नर अचेत पावते डर रे दीन दयाल सगल पै पंजन सरण ताए तुम पर रे रहाओ वेद पुराण जस गुण गावत ताको नाम ही ये मोह तर रे पावन नाम जगत में हर को सेमर सेमर कसमल सब हर रे मानस दे भौर न पावे कछु उपाव मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं।

सुरत एक लिवलाए, सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए, तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सह सुभाए, गुरमति नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए, तरमय साचो गुरमुख पाओ, नाम बिना नहीं निरठाओ, प्रेम परायण प्रीत मराओ, नदर करे ता बूझे नाओ, माया मोह सर्व जंजाला, मनमुख चील कुश्त बिकराला, सगुर सेवे चूके जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला, गुरमुख बूझे एक लिवलाए, निकर वासे सास सुमाए, जमण मरना ठाक रखाए, पूरे गुरते ए मद पाए, कथनी कथो न आवे ओर, गुर पुछ देखे नाही दर होर, दुख सुख भाणे किसे रजाए, नानक नीच कहे लिवलाए, गौड़ी महला पहला, दूजी माया जगत चितवास, काम क्रोध अंकार विनाश, दूजा कौन कहा नहीं कोई, सब मैं एक निरंजन सोई रहाओ, दूजी दुरमत आखे दोए, आवे जाए मर दूजा होए, तारण गगन न देखो दोए, नारी पुरख सुबाई।

खेमा गई ब्रतशील संतोखं, रोग न व्यापे ना जम दुखं, मुक्त पय प्ररूप न रेखं, योगी कौ कैसा डर होय, रूख बिरख गृह

किसे मुकाम, सा मरे संते माया दाम, मैं तन दीजे हर अमृत नाम, तरैयत मैर मुकदम सिकदार, निचल कोई ना दिसे संसार, अफर काल कूड़ सिर मारे, निचल एक सच्चा ससोई।

ले आप हो जाओ। मनमुख सूत को कहे न जाए, जिचिर शब्द न पीजे हर कहे न आए। रहाओ सबो सूत के जेता मोह आकार, मर मर जमे वारो वार। सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे। सूतक कर्मन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए। सदगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए। सास्त सिमरत सो देखो कोय, विण नावे को मुक्त न होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, काल में गुरमुख उतरस पार। साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहे सुमाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा। हर जू राखो हृदय उरतारा, गुरमुख शोभा साज दुआरा। पंडित हर पढ़ तजो विकारा, गुरमुख भौजल उतरो पारा। रहाओ गुरमुख विचो होमे जाए, गुरमुख मैल न लागे आए। गुरमुख नाम से मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुखोई। अपना मन पर बुद्ध हो बुझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई। गुरमुख समझो सदा सुखोई, मनमुख डंप बहुत चतराई। जो कुछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे ठौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजो लाए भये नित्याना। जा पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई। गुरमुख जात पद नामे वड्याई, सायर की पुत्री बिदार गवाई। नानक बिन नावे झूठी चतराई, गौड़ी महला तीजा। ए जो का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुरसब सोजी पाई। ऐथे अगे हर नाम सुखाई, आराम पढ़ो मन करो विचार। गुरप्रसादी मैल उतार रहाओ, वाद विरोध न पाया जाए। मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच ले लाए। हौ में मैला एओ संसारा, नित तीर्थ नावे न जाए अंकारा। बिन गुर पेटे जम करे खुवारा, सोजन साचा जे हौ में मारे। गुर के शब्द पंच संघारे, आप तरे सगले कुल तारे। माया मोहे नट बाजी पाई, मनमुख अंदर है लपटाई। गुरमुख अलिप्त रहे लिवलाई, बहुते पेख करे पेख तारी। अंतर सिना फिरे अंकारी, आप न चीने बाजी गारी। कापड़ पैर करे चतराई, माया मोहे अध परम फुलाई। बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रते सदा बैरागी। गृह अंतर साच लिवलागी, नानक सतगुर सेवा से वड़भागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा। तेते उपजे दे मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा। हम घर राखे सदगुरु मिलाया, अन दिन भगत घर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पढ़वाद वखाणे सिर मारे जमकाला। तत न चीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान कुमार्ग पाए। हर नाम सारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवदल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, विख्या राता बहु दुख पावे। जम का गल जेवड़ा, नितकाल संतावे। गुरमुख जम काल ने

पद पाईए ना मने सुख होए सागुर ते नाम पाईए धर्म मिले प्रसोए सागुर ते जो मोह फेरे ओए क्रम दे ना टिकन तरत असमान ना चलई विच विष्टा पए पचन यो जग परम भुलाया मोहे ठगो ली पाए जिन्ना सगुर फिटया ते नेड़ ना फिटे माए सगुर सेवन सो सोने होमे मैल गवाए अवदरते से निर्मले चले सतगुर पाए हर प्रदाता एक तू तू आपे बख्श मिलाए जन नानक शरणागति ज्यों पावे तवे छिड़ाए राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहले एक

त्रिष्ट फैराही बिन सिमरन कूकर हर काया ताकत लोभी बंद न पाया बिन सिमरन है आत्म काती सागत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मिलाया कहो नानक गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजवा गुर कै बचन मोहे

लियो उबारिया मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया गुर निव निव लागो पाए दियो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक एक सब

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, रहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, ओड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

चंदन शीतलायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरो, प्यार संतन नाप करायो, नाम कर्म न धर्म सोच, प्राप गए पूजा आपायो, पौ खंडन दुख पंजनो, भगत वशिल हरनायो।

एहो में मारे इन बद मेरो प्यारे सा तन सुहागण सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार निवारे नानक कामन हर वर पाया सगले दुख विसारे कामन पिरों भुली जियो माया मोए प्यारे झूठी झूठ लगी जियो कूड़ मुठी कूड़ियारे कूड़ निवारे गुरमत सारे जूए जन्म नहारे गुर शब्दे सेवे सच समावे विचों होमे मारे हर का नाम हृदय विसाए।

अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार ने मारे, नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे, आवो दया करे जियो, प्रीतम अत प्यारे, कामण बिनो करे जियो, सच शब्द सीगारे, सच शब्द सीगारे हो में मारे, गुरमुख कार्य सवारे, जो जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर बीचारे, मनमुख काम आपी मोह संतापी, किसे आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाओ न पाए, बिन गुर अत प्यारे, मुंद आणी भोली निगुणिया जियो, फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शनहारा, अवगण बख्शनहारा, कामण कंत प्यारा, घट घट रहा समाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाईए, सदगुर बूझ बुझाई, सदा आनंद रहे दिन राती, आनंदन रहे लिवलाई, नानक सहजे हर वर पाया, सात हन नौ निध पाई, गौड़ी महला तीजा, माया सर सबल वरतै जियो, क्यों कर दुत्र तरिया जाए, राम नाम कर भोथा जियो, शब्द खेबट विच पाए, शब्द खेबट विच पाए, हर आप लंघाए, इन विद दुत्र तरीए, गुरमुख भगत प्राप्त होवे, जीवतियां इओ मरिए, खिनमय राम नाम के लिख काटे,

अगर पाए रसना शब्द सुहाए, नाम त्याय सुधा सुख पाए, नाम रहे लिवलाए, नामे उपजे नामे बिनस, नामे सच समाए, नानक नाम गुरमति पाईए, आपे लय लवाए, ए वडाणी चाकरी पराजियो, तन छोड़ परदेस सिधाए, दूजे किने सुगना पायो पिराजियो, बिख्या लोभ लुभाए, बिख्या लोभ लुभाए परम फुलाए, ओ क्यों कर सुख पाए, चाकरी वडाणी खरी दुखाली, आप वेच तरम गवाए, माया बंधन टिके नाही, खिन खिन दुख संताए, नानक माया का दुख तवे चूके, जां गुरसबदी चितलाए, मानमुख मुद गवार पिराजियो, शब्द मन नाम साए, माया का परम अंध पिराजियो, हर मार्ग क्यों पाए, क्यों मार्ग पाए बिन सदगुर पाए, मनमुख आप गणाए, हर के चाकर सदा सुहेले, गुर चरणी चितलाए, जिसनु हर जियो करे कृपा, सदा हर के गुण गाए, नानक नाम रतन जग लाहा, गुरमुख आप बुझाए, राग गौड़ी संत महला पंजवा।

ओं साध सदगुर नमस्कारं आद मद अंत निरंकारं आपे सुन आपे सुगयासन आपे सुनत आप ही जासन अपने आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो।

एक बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी ओं गुरमुखियो अकारा एक है सूद परोवन हारा पिन पिन त्रैगुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण त्रिटारं सगल पाद कर करे उपायो जन्म मरण मनमो बढ़ायो दू पाद ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा श्लोक से सा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत ससो सत पुरख ते पिन न को तो सरन परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहू को जापत तो साधु ए पुंचन हारा नानक ताकै सद बलिहारा श्लोक तन तन खां पुकारते माया मोह सब कूर नाम बिहू ने नानका होत जा सब धूर पवड़ी तदा

साध रज रात्य तंदे का बेअपह ताहू जो एक शाड अन कतह ना जाहू जा के ही है दियो प्रवनाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेख अर ज्ञान ध्यान मरहड मिलो।

तर फत ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सो कैत सुंत कस जोग न हो। ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत संसर सबताक। ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा थारी। श्लोक आमन आए से तुम्हें बिन बूझे पद ठोर। नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर। पौड़ी या जुग में एक है को आया जन्म तुम होयो मोहनी माया। गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास सिमरत प्रव रहते। उर्ज परे सो छोड़ छिड़ाना देवन हार मने बिसराना। तारो कृपा जिसे गुसाई एत उत नानक इस बिसरो नाही। श्लोक आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा पिन ना कोय। आमन जाना ते मिटे नानक जे मन सोए। पौड़ी एओ जी बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीड जोन फासे। इन माया त्रैगुण बस कीने आपन मोह कटे खड़ दीने। ए साजन काशिप कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया। कर कृपा सत संग मिलाए नानक ताके निट न माए। श्लोक किरत कमामन शोभ अशोभ इन्ने तिन प्रभे आप बस आपन हो करे। नानक बिन हर खां कमात। पौड़ी एक है आप करा मनहारा आप है पाप उन विस्तारा। या जुग जित जित आप है लायो सो सो पायो जो

एक नाम ले मने परो यैया जन्मन हारिये और पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुरपूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ए बिखिया दिन चार छे छाड़ चलो सब कोए ताको मात पिता सुतिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिनसत नाही बासे ती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते बौर न आया श्लोक।

साधु संगत तव बस जो आपन होए दयाल टोहे टाहे बो पावन बिन आवे सुख नाहे तले जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे बार बार जाओ संत सदके नानक पाप बिना से कद के सलोक ठाक न हो तीतन हो दार जे हो वो सो प्रसन्न जो जन परम अपने करे नानक ते तन तन पौड़ी ठठा मनुआ ठा है नाही जो सगल चाके के लबटाही ठहक ठहक माया संग मुए ओवा के कुशल न कत हु हुए ठाण परी संते संग बसया अमृत नाम तहा जी रसया ठाकुर अपने जो जन पाया नानक ओवा का मन शीतलाया श्लोक डंडौत बंधन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ पौड़ी डड्डा डेरा यो नहीं जय डेरा तय जान ओआ डेरा का संजमो गुर कै शब्द पछान या डेरा को श्रम कर खाले ताक का तसु नहीं संग चाले ओआ डेरा की सो मित जान जा को दृष्ट पूर्ण भगवान

जम मरे गर्भ जोन दुह पाए मोह मगन लपट तरह आहो आवे जाए टहे तो टहेद अब टह परे साजना सरनाए दुके फाहे काटे नानक लिए सुमाए।

हर हर नाम श्रवण जे सुनिया गुरमुख जे कट रहे समाई नानक ते जन मिली वडाई श्लोक नानक नाम नाम जप जपया अंतर बाहर रंग गुर पूरे उपदेसया नरक नाहे सा संग पौड़ी नन्ना नरक परे ते नाही जाके मन तन नाम साही नाम निधान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं ना ओए खपते नन्ना कार न होता ताको ना मंत्र गुर दीनो जाको निध निधान हर अमृत पूरे ते बाजे नानक अनघ तूरे स्वरूप पतरा की गुर पार ब्रह्म।

दृष्टि आया उस्तद करण जोग पौड़ी खखा खरा सरा होता हु जो खिर में ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रभ निर्वानी भावे खसम ता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्सनहारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मान मेरे तरन परो हर राय उगत सियानप सगल त्याग नानक लय सुमाए पौड़ी ससा सियानप शाड एयाना हिकमत हुक्म ना प्रपतियाना सहज पाद करे चतराई संग तुहारे एक।

दिन रात हर हर औखद साध कुमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है

तरण करामनहार सुवामी, सगल कठा के अंतर जामी, अपनी गतमित जानो आपे, आपन संग आप प्रवराते, तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक अवर न जान सकोए। सर्व धर्म सिष्ट धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्यम में उद्यम पला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी, सगल थान ते ओ उत्तम थान, नानक जे कड़ वसे हर।

काल अष्टपदी परमैया के गुण चेत परानी तवन मूल ते कम दृष्टानी जिंतु सासवा सीगारे सर्व अग्न में जिने उबारे पार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद दिर्द पया ऊपर साग सैन मुख प्याओ बैठ तो दैन एहो निर्गुण गुण कशु न बूझे बक्स लियो तो नानक सीजे ये प्रसाद हर ऊपर सुख बस तुद प्रात मीत बनता संग हस ये प्रसाद पी वैसी तल जला सुखदाई पवन पाप अमुला जे प्रसाद भोगे सबरसा सगल समग्री संग साध बसा तीन हस्त पाप करण नित रसना इसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मूड अंध व्यापे नानक काढ़ लेओ प्रभ आपे।

अंत सगल समग्री तुमरे सूत्र थारी, तुमते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी सलोक, तेन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए, नानक कहू न सीजई, पिन नावे पद जाए, अष्टपदी तस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण विखोट गवावे, एक पी ना दे दस पी हिर ले, तो मूड़ा को खा करे, श्री ठाकुर सो नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रा मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, अगंत सो अपनी दे रास, खाद पीत बरते अनदे उलास, अपनी अमान कछ भौर साहो ले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे।

मिथ्या ताना नहीं पर उपकार, मिथ्या बासले दबकार, बिन बूझे मिथ्या सब भय, सबल दे नानक हर हर नाम लय, बिरती सागत की आरजा, साज बिना के होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिगाए, मेघ बिना जो खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरते सब काम, ज्यो किरपन के निरार्थ दाम, तन तन ते जन जे कड़ बस्यो हरनाओ, नानक ताके बल बल जाओ, रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंढ लावत, जान नहार प्रभु परवीन, बार पेख न काहू पीन, अवर उपदेश आप न कर, आपत जावत जन्मय मर, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरे संसार, जो तुम पाने तिन प्रवजाता, नानक उन जन चरण पराता, तरो बेंती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने, आपे आप कर तन बेरा, किसे दूर जिनावत, किसे बुझावत नेरा, वो पाप स्यान पर सग

सह स्वभाव ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जल ब्रह्मज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्मज्ञानी के मित्र सत समान ब्रह्मज्ञानी के नाही अवमान ब्रह्मज्ञानी ऊंच ते ऊंचा माने अपने के सब ते नीचा ब्रह्मज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म

ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उर धारे जो अंतर नाम सर्वमय पेखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानको अपरस सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, परत्रे रूपना पेखे नेतर, साध की टहल संत संग हेत, करना सुने काहू की निंदा, तपते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद दिखिया पर हरे, मन की बासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नानक कोड़ मध्य को ऐसा अपरस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते हुए पिन्न, कर्म करत होवे ने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बचे, केवल भगत कीर्तन संग रचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, तप ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानको वैष्णो परम गल पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते बिरसे सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सा संग पापा मन खोवे, इस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पे विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नान कैसा भगवती भगवंत कौ पावे, तो पंडित जो मन प्रबोध, राम नाम आत्म मैं शोध, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित कै उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, तो पंडित फिर जो न आवे, वेद पुराण तिमृत बूझे मूल, सुख में जाने अस्तूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपे को नाम, जो जो जपे जिसकी गद होए, सा संग पावे जन कोय, कर कृपा अंतर उर तारे, पास प्रेत मुग्ध पाथर को तारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जूत कते न पाई गे धर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तुझ नदरी आया, दाद संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निट हर जान, तो दास दर गए परवान, अपने दास को आप कृपा करे, ते दास को सब सोजी परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सोऊ कहावे, तैसा हरक तैसा ओ सोग, सदा अनंत नहीं बेयोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वर्ता ऐसा ही जुत, नानको पुरख कहिए

प्रभ पावे सोई पुन हो पसर आप हो अंत तरंग लखे न जागे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल श्लोक उस्तुत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभृति बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पे तीर्थवासी कई कोट बन प्रमेय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार कई कोट सबका विचार कई कोट नर्तन नाम त्याव है नानक करते का अंत न पावे कई कोट पय अवमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेग आत्मन कोर कई कोट परदर्व को घेरे कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश परमाहे जित जित लाभ हो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर प्योपाए कई कोट पाथर वृक्ष निपजाए कई कोट पवन पानी बह कई कोट ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दान इंद्र सिर शतर सगर समग्री अपने सूत तार नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार कई कोट राजस तामस साधक कई कोट वेद पुराण सिमर तर शास्त्र कई कोट कीरतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की त्रिजीव कई कोट गिरी मेर स्वर्ण तीव कई कोट जख किन्नर पसाच कई कोट भूत प्रेत तुकर मिर्गाच सब ते नेरे तहू ते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बोजो नी फिरे कई कोट बैठ ही खाहे कई कोट काले थक पाहे कई कोट की ये तरवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तै तै रखे नानक सबज प्रभ कहे हाथे कई कोट पय बैरागी राम नाम संग तिल निवलागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म में पार ब्रह्म रखनते कई कोट दर्शन प्रप्यास दिन को मिले ओ प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन को होए आप सो प्रसन्न नानक तेजन सदा तन तन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई

बौर न आवे। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मंत्र नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल में जलया एक टाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सद कुरबान। श्लोक सुखी बसे मस्कीनिया, आपने वार तले। बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतर राज अब महान, तो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जो बनवंत, तो होवत विष्टा का जंत। आप को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बो जोन परमावे। तान पूम का जो करे गुमान, तो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानकी हा मुक्त आगे सुख पावे। तनवंता हुए कर गरबावे, तन समान का संग न जावे। बहु लश्कर मान ऊपर करे आस, पल पीतरता का हुए विनाश। तब ते आप जाने बलवंत, किन में हुए जाए पसमंत। किसे ना बदे आप अहंकारी, धर्म रायत करे खुवारी। पुर प्रसाद जाका मिटे अपमान, तो जन नानक दरगे परवान। कोड कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरतारे। अंक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार। अंक जितन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे गो कैसे गवे। आस को जो पला कहावे, किसे पलाई निट न आवे। सर्व की रेन जाका मन होए, को नानक ताकी निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कश होए, तब सुख सुगुना ही कोए। जब ए जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग नह चलना ही चीत। जब लग मो मग्न संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहज कटे लग तो उड़तावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग बिखिया के करे, ने तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजे, स्वपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुखोय, बड़भागी किसे प्राप्त होए। करन करामने आपे आप, सदा सदा नानक।

निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कर कर सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन पर हो जन उदर नहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत के दुख निहार जा कटे संत के दुखन जमते नहीं छुटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन शोभा ते हीन संत के हत्ते को रखे ना कोय संत के दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक पीतर संत के दुखन ते मुख पावे संतन के दुखन कागजों लावे संतन के दुखन

गत नानक जप एक हर नाम, रूपवंत होए नाहि मोह, प्रभु की जोत सगल कट सोह, तनवंता होए क्या को गर्भ।

संतन कर पाया तज अपमान लेहो मन मोल राम नाम हिरदे मैं तोल लाद खेप संतह संचाल अवर ते आग बिखिया जंजाल तन तन कहे सब कोय मुख उजल हर दर गए सोय यो वापार विरला वापार है नानक ताके सद बलिहार है चरण साध के तुय तुय पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो इसनान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवावड पागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है अनक विघन ते साधु राख है हर गुण गाए अमृत रस चख है ओढ़ गई संते दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीव लनहार भूखे को देवत आधार सर्वनदान।

एको होए। सच करणी सचता की रहत, सच हृदय सत मुकहत, साची दृष्ट सचा आकार, सच वर्ते सचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। सलोक रूप न रेख न रंग केश, त्रयो गुण ते प्रापिन, तिसे बुझाए नानका, जिस होवे सो प्रसन्न। अष्टपदी अबनासी प्रामन में राख, मानुख की तू प्रीत त्याग, तिसते परे नाही किश कोय, सर्व निरंतर एको सोय, आपे बीना आपे दाना, गैर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल भगसंद, साथ तेरे की चरनी पाओ, नानक कै मन एव अनराओ।

अनंत रूप मंगल सुजाक सर्व शोक सुनहे करताक राजमय राज जोग मय जोगी तप मय तपीसर गृहस्थ मय भोगी त्याय त्याय भगते सुख पाया नानक थ पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाग सगल देव हारे अवगाह पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण मै जा को फरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना विद तीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहे हो।

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित्त प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबार नानक बलिहारी श्लोक साधना चले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपासा मीत बसारो चरण कमल हृदय उर तारो करण कान सो प्रसमरथ गिरड़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस कोवनत बाछे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोभा को करे पली करनी सा सोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए सर्वनदान मै हर नाम अनदान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्धो हर कै नाए दैस ताव ते आवे ठाए ताको बिगन ना लागे कोए जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास जित कर जाए बसे अविनाशी

मन अंतर हो मैं रोग है, प्रभुले मन मुख दुर्जना, नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा, मन का रत्ता रंग स्यो गुरमुख हर गुण तास, जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर साबास। पौड़ी, तू करता पुरख अगम है, इस नाल तू वड़ी है, तू जेवड हो सो आखी है, तू जेगा तू है पड़ी है, तू घट घट एक वर्तदा गुरमुख पर गड़ी है, तू सच्चा सब सदा खसम है, सब दू तू चढ़ी है, तू करे सो सच्चे होए सी ता कायत कड़ी है। श्लोक महला चौथा, मैं मंतन प्रेम प्रम का अठे पैर लगन, जन नानक कृपा तार प्रभ सदगुर सुख वसन। महला चौथा, जिन अंदर प्रीत प्रम की जो बोलन तिवे सुहन, नानक हरि आपे जानदा जिन लाई प्रीत प्रन। पौड़ी, तू करता आप फुल है फुलन विच नाही, तू करे सो सच्चे पला है गुर शब्द बुझागी, तू करण कारण समर्थ है दूजा को नाही, तू साहेब अगम दयाल है सब तुद त्यागी, सब जीत तेरे तू सब सदा तू सब छिड़ागी। श्लोक महला चौथा, सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन, गुर तुठे सज्जन मेलिया जन नानक सुख सुवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है जिसनु दया सदा होए, सतगुर अंदरो निरवैर है सब देखे ब्रह्म एक सोए, निरवैरा नाल जे वैर चलाएंदे तिन विचों तिष्ठिया ना कोए, सतगुर सबना दा भला मनाएंदा एदा बुरा क्यों होए, सतगुर नु जिया को इच्छदा तेखा फल पाए कोए, नानक करता सब कुछ जानदा जिदू किश गुजा ना होए। पौड़ी, जिसनु साहेब वड्डा करे सोई वड जानी, जे साहेब पावे थे बख्शले सो साहेब मन पानी, जे को उस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनु सतगुर मिले सो गुण रवे गुण आख वखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच सुमाणी। श्लोक महला चौथा, हर सत निरंजन अमर है निरभौ निरवैर निरंकार, जिन जप्या एक मन एक चित तिन लथा हो में पार, जिन गुरमुख हर आराध्या तिन संत जिना जयकार, कोई निंदा करे पूरे सदगुरु की तिसनु फिट फिट कहे सब संसार, सगुर विच आप वर्तदा हर आपे रखण हार, तन तन गुरु गुण गावदा तिसनु सदा सदा नमस्कार, जन नानक तिन कौ वारिया जिन जप्या सिरजनहार। महला चौथा, आपे धरती साजियन आपे आकाश, विच आपे जंत उपायन

ते जनके बलिहारण जिन भरिया प्रभ निर्वाण जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरख सुजान संत संग सागर तरे जन नानक सच्चा तान महला पंजवा भरके उठ पढ़ाउना मेरे घर आवो पाओ पखाला तिसके मन तन नित भाव नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो ग्रहो तन सब पवित्र होए हर के गुण गावो हर नाम व्यापारी नानका वडभागी पावो पौड़ी जो तू पावे सो भला सच तेरा पाना तू सब मैं एक वर्तदा सब मैं समाना तान सनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाई है मन सच्चे पाना नानक प्रभ शरणागति साध सद कुरबाना सलोक महला पंजवा चेताई ता चेत साहेब सच्चा सो तनी नानक सदगुर सेव चढ़ बोहित पौजल पार पाओ महला पंजवा वाऊ संदे कपड़े पहरे गर्भ गवार नानक नाल ना चलनी जल बल होए शा

पद हर प्रवान, सर्व त्याग फल केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नगन फिरत जाओ पाइए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग, क्या नांगे क्या बाधे चाम। जब नहीं चीन सयात्म राम, हरहाओ मूड मुडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गई आकाई, बिंद राग जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परम गद पाई, कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गद पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात स्नान कराही, ज्यों पै दादुर पानी माही, जाओ पै राम राम रत नाही, के सब धर्म राय कै जाही रहाओ। काया रत बहु रूपर चाही, तिन को दया सुपने पी नाही, चार चरण कह बहु अगर, साधु सुपावे कल सागर। कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्ब छोट महारस पीजय। कबीर जी गौड़ी, क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जा कर दे पाओ है दूजा, रे जन मन माधव स्यों लाई है, चतराई ना चतर पुज पाई है रहाओ। पर हर लोभ हर लोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बदे अमेव, मिल पाथर की कर ही सेव। कहो कबीर भगत कर पाया, ओले पाए मिले राग राया। गौड़ी कबीर जी, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिन ते सब उत्पाती।

पीर जी उपजे निबजे निबज समाई, नयने देखत इहो जग जाई, लाज ना मरो कहो कर मेरा, अंत की बार नहीं कछ तेरा रखाओ, अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अग्न संजाली।

अब मोए मिलो है जिया मनहारा रहाओ। या देखी परमल महकंदा तासुक बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनहारी टूटी लाज परे मत सारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी ना ओ कुवटा ना पनहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे काल हम बहुत बसाए जब हम आराम गर्भ होए आए रघाव। योगी जति तपी ब्रह्मचारी कबहू राजा शतरपत कबहू पेघारी, सागत मरे संत

सो जल निर्मल कथत कबीर गौड़ी कबीर जी। जे कुल पूत ना ज्ञान बिचारी विधवा कस ना पई महतारी जे नर राम भगत ने साधी जन्मत कस ना मो अपराधी रहाओ मोच मुच गर्व गए कीन बचया बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजया कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन पावे रहाओ। जे कड़ राम रहया भरपूर, इनकी पाग

गगन साल चोवे मेरी पाठी, सांच महारस तन पया काठी, होआ को कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बीचारा, रहाओ सहज कलालन जौ मिल आई, आनद माते अनदन जाई, चीन त चीत निरंजन लाया, कौ कबीर तो अनपो पाया।

कहे तो कबीर पले असवारा, बेर कतेबते रह निरारा, गौड़ी कबीर जी। जे मुख पांचो अमृत खाए, ते मुख देखत लूप टलाए, एक दुख राम राय काटो मेरा, अग्न दह अर गर्भ बसेरा, रहाओ काया विभूति बहुविध पाती।

पौड़ी ग्वारेरी हस्तपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुखमो न मांगया पावे दिखया अजो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना सो सुखमो साज कर जाना संकादक नारद मुन सेखा तिन पी तन मैं मन नहीं पेखा इस मन को कोई खोजो पाई ता छूटे मन कहां सुमाई गुर प्रसादी जय दो नामा भगत के प्रेम इन ही है जाना इस मन को नहीं आवन जाना जिसका परम गया तिन साज पछाना इस मन को रूप न रेख्या काई हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई इस मन का कोई जाने पेओ ए मन लीन पय सुख देओ जियो एक अर सगल शरीरा इस मन को रब रहे कबीरा गौड़ी ग्वारेरी अहे निस एक नाम जो जागे केतक सिद्ध पय लिव लागे रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कल्प तरतारे जो हर हरे सो होए न आना कहे कबीर राम ना पछाना गौड़ी पी सोठ पी रे जी न लज लाज तोय नाही हर ताज कद काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जान पर कर जातन सोही सो साहेब रहा पर पूर सदा संग नाही हर दूर कबला चरण शरण गए जाके कहो जनका नाही करता के सब को कहे जास की बाता सो सुमरथ निज पत है दाता कहे कबीर पूर्ण जग सोई जाके हृदय अवर ना हो।

इस माटी में पमन समाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कहे कबीर एक नीव सारी, खिन में बिनस जाए अंकारी गौड़ी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, रहाओ जत पावे ता हुक्म नावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुग गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, उरवार पार्षद एको दानी, गौड़ी नावी जोन छाड़ जो जग में आयो, लागत पवन खसम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रखाओ, गर्भ जोंग में उर तब करता, तो जठर अग्न में रहता, लगत उरासी जोन प्रमे आयो, अब के शुटके ठौर न ठायो, कहो कबीर पर सार्ग पानी, आर्त जिसे जात न जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्गबाज ना बाँची है, डरकेन नरक निवास, होना है सो होई है, मने न कीजे आस, रमैया गुण गाइये, जाते पाइये पर मन धान रखाओ, क्या जप क्या तव संजमो, क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जूत न जानिए, पाओ भगत भगवान, संपे देख न हरखिए, विपत देख न रोए, जो संपे त्यो विपत है, विद ने रचिया सो होए, कहे कबीर अब जानिया, संतन हृदय मजार, सेवक सो सेवा पले, जे कड़ बसे मुरार, गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को, तैसो यो संसार, राम रस पिया रे, जे रस बिसर गए रस और रखाओ, और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर ना रखाए, जो उपजे सो बिनस है, तो का रोवे बलाए, जय की उपजी तै रची, पीवत मर्दन लाग, तय कबीर किद चेतया, राम सिमर बैराग, राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी, लोचन परी ले उसासा, और ना पीजे पग ना खिसे, हर दर्शन की आसा, उड़ो ना कागा कारे, बेग मलीजे अपने राम प्यारे रहो, कहे कबीर जीवन पद कारण, हर की पगत करीजे, एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवीजे, राग गौड़ी ग्यारवी आस पास कण तुरसी का बिरवा, माज बनार सुगाऊ रे, हुआ का स्वरूप देख मुई ग्वारन, मोको छोड़ न आऊ न जाहू रे, तुहे चरण मन लागो सारंग तार, सो मिले जो बड़ भागो रघाओ, बिंद्राबान महरन मनोर, कृष्ण चिरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तुही सारंग तार, मोहे कबीरा नाऊ रे, गौड़ी पूर्वी बारवी बिपल बस्तर केते हैं पैरे, क्या मन बदे बस कहा पया नर देवा धोखे, क्या जल बोरो ज्ञाता, जियरे जाएगा मैं जाना, आगत समझ ए आना, जब जब देखो बौर ना पेखो, संग माया लपटाना रखाओ, ज्ञानी त्यानी ब उपदेसी, यो जग सुग लो तंडा, कहे कबीर एक राम नाम बेन, या जग माया अंधा, गौड़ी बारवी मारे छाडो परम, पलट होए नाचो, या माया के डांडे, सूर के सनमुख रन ते डर पे, सती के सांचे फांडे, डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सद पाइये, लीनो हाथ संधौरा रहाओ, काम क्रोध माया के लीने, या बिर जगत बिगूता, कहे कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊंच ते ऊंचा गौड़ी तेरवी, फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर न करत भी चार, तुही दरिया तुही करिया, तुझे ते निस्तार, बंदे बंदगी एक तैयार, साहेब रोस तरो के प्यार, नाम तेरा आधार मेरा, जो फूल जई है नार, कहे कबीर गुलाम कर का, जियाए पावे मार, गौड़ी लग चौरासी जी जोन में, परत नंद बोथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो होए, आग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरण आकाश दसो दस नाही, तब ओ नंद।

कुंठ जाइए, ना पदार्थ मने बसाइए। हृदय सुजो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक तोए। निंदा करे सो हमारा मीत, निंद कमाए हमारा चीत। निंदक सोजो निंदा हो रे, हमारा जीवन निंदक लोर। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमारा करे उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरभव, तरन तारन राम राया अरहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पय है, एक के देखत मन पतियाही। जब बुध होती तब बल कैसा, अब बुध बल ना खटाई। कहे कबीर बुध हर ली मेरी, बुध बदली सिद्ध पाई गौड़ी। खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्प प्राण कर राखे, करते बार न लाई। अब मान जागत हो रे पाई, गाफल हो के जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ, पंच पैरुआ दर में रहते। इनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चेत होए रहो। तौले प्रगास उजारा, नाव कर देख जो कामन पूली। बस अनूप न पाई, कैत कबीर नवे कर मुसे। दसवें तत् सुमाई गौड़ी, माई मुहे अवर ना जान्यो आना ना। थे सुनकाद जस गुण गावे, तस बसे मोरे प्राणा ना। रहाओ हृदय प्रगास ज्ञान गुरगमत, गगन मंडल में ध्याना ना। बिखे रोग पय बंधन पागे, मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्राप्त, दूसर मने ना आना ना। चंद्र बाज पय मन बासन, त्या कट्यो अब माना ना। जो जन गाये त्याय ठाकुर, तास प्रभु है थाना ना। ते बड़पा बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। काढ़ सकत शिव सह प्रगास्यो, एक एक सुमाना ना। कहे कबीर गुर पेट महासुख, परम तरह मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बामन।

चरलोत्र साब कश इन गीम आ गए, ए अखर खिर जाएंगे, ओए अखर इन मैन आ गए, जा बोलते चर आवा, जय अबोल तय मन ना रखावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लखे ना कोई, अले लहो तो क्या कहो, कहो ता को उपकार, बड़क बीज मै रव रहे हो, जा को तीन लोग विस्तार, अले लहंता पेद शय, कश कर पायो पेद, उल्ट पेद मन पेद्यो, पायो अपंग अशेद, तुर्क तरीकत जानिए, हिंदू बेल पुराण, मन समझावन कारण, कशुक पढ़िए ज्ञान, ओंकार आदि मैं जाना, लिखर मेटे ताए न माना, ओंकार लखे जो कोई, सोई लख मिटना ना होई, कक्का किरण कमल में पावा, सद विकास संपट नहीं आवा, हर देता कुछ मरस पावा, आके कहा कह का समझावा, खखा ए खोड़ मन आवा, खोड़े शाड ना दैद सतावा, खसमे जान खिमा का रहे, तो होए नख्याओ अखय पदल है, गग्गा गुर के भजन पछाने।

आदि करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहिर अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मैं बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बे

त्रस मन मिले गुर निर्गुण एक विचार अनक जतन निग्रह किए तारी न टरे परम फास प्रेम भगत नहीं उपजे ताते रविदास उदास एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद राग अस महला पहला कर पहला सोदर सो दर तेरा केह सो कर केह जित बै सर्व संभाले वाजे तेरे नाद अनेके संख केते तेरे वामन हारे केते तेरे राग परी सो कही है केते तेरे गावन हारे गावन तुदनु पौन पानी बै संतर गावे राजा तर्म दुवारे गावन तुदनु चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनु ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनु इंदर इंद्रासन बैठे देवतिया दर नाले गावन तुदनु सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनु साध विचारे गावन तुदनु जति सती संतोखी गावन तुदनु वीर करारे गावन तुदनु पंडित पढ़े रखी सर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनु मोहनिया मन मोहन सुरगुमश पय आले गावन तुदनु रत्न पाए तेरे जेते अठ सठ तीर्थ नाले गावन तुदनु जोध महाबल सूरा गावन तुदनु कहानी चारे गावन तुदनु खंड मंडल ब्रह मंडा कर कर रखे तेरे तारे सेई तुदनु गावन जोत पावन रते तेरे पवित्र साले होर केते तुदनु गावन से मैं चित न आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती जिनसी माया जिन उपाई कर कर देख कीता अपना ज्यो तेदी वड्याई जुत पावे सोई करसी फेर हुक्मना करना जाई उपात साहो सहापत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला चौथा सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम्य पारा।

नदर करे जो कुछ करना सो करया अवरण करना जाई जैसा वरते तैसो कहिए सब तेरी वड्याई काल कलवाली माया मद मीठा मन मतवाला तीवतर है आपे रूप करे बो भांति नानक बपड़ा एव कह आसा महला पहला वाजा मत पखावज पाओ होए आनंद सदा मन चाओ एहा भगत एहो तब ताओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पूरे ताल जाने साला और नचना खुशियां मन माह हरहाओ सस संतोख वजे दोए नाल पैरी वाजा सदा निहाल राग नादनी दूजा पाओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पौ फेरी होवे मन चीत बहद्या उठद्या नीता नीत लेटन लेट जाने तन स्वाहो ए तरंग नाचो रख रख पाओ।

से आए नदर करे इतना सदगुरु मिले परमत नानक पहुंचल तरे आसा मगला पहला पंच बदे दुध बिन तेन पंख बिन पंखी जल बिन उदबुज कामना ही क्या सुल्तान सलाम विहूणा अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसर दुख बहुता लागे दुख लागे तू विसर नाही हरहाओ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पौन ना वाजे चरणी चले पजूता आगे विण सेवा फल लागे अखर देख बाग पे चोखी सिंचित पाओ करेगी सब ना फल लागे नाम एको बिन कर्मा कैसे लेगी जेते जी तेते सब तेरे विण सेवा फल किसे नाही दुख सुख पाना तेरा होवे विण नावे जियो रहे नाही मत विच मरण जीवन होर कैसा जा जीवा ता जूत नाही कहे नानक जीवाले जिया जय पावे है राख तुही आसा महला पहला काया ब्रह्मा मन है तोती ज्ञान जिनेऊ ध्यान कुछ पाती हर नामा जा जा चौनाओ गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ पांडे ऐसा ब्रह्म विचार नामे सोच नामो पढ़ो नामे चज आचार रखाओ बार जनेऊ जिचर जोत है नाल तोती टिक्का नाम सुमाल ऐथे उथे निभगी नाल विण नावे होर कर्म ना पाल पूजा प्रेम माया परजाल एको वेखो अवर न पाल इन्ने तत् गगन दा द्वार हर मुख पाड़ पड़े बीचार भोजन पाओ परम पाओ पागे पारू रश बचोर न लागे तिलक ललाट जाने प्रावेक बूझे ब्रह्म अंतर बवेक आचारी नहीं जीत्या जाए पाड़ पड़े नहीं कीमत पाए अष्टदशी चौपेद न पाया नानक सदगुर ब्रह्म दिखाया आसा महला पहला सेवक दास भगत जन सोई ठाकुर का दास गुरमुख होई जिन सिर साजी तिन फुन गोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई साच नाम गुर शब्द विचार गुरमुख साचे साचे दरबार रखाओ सच्चा अर्ज सच्ची अरदास मैली खजम सुने साबास सच्चे तख्त बुलावे सोए देव डयाई करे सो होए तेरा तान तू है दी बाण गुर का शब्द सच निशान मन ने हुक्म सो प्रगट जाए सच निशाने ठाक न पाए पंडर पढ़े वखाने वेद अंतर अवस्त न जाने पेद गुरबिन सूझी बूझ न होए साचा रवर या प्रसोए क्या हो अखा अख वखाणी तू आपे जाने सर्ब वडाणी नानक एको दर दी बाण गुरमुख साजता गुजराण आसा महला पहला काची गागर दे दुखेली उपजे बिन से दुख पाई यो जग सागर दुत्र क्यों तरीये बिन हर गुर पार न पाई तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे तुझ बिन अवर ना कोई हरे सर्बी रंगी रूपी तू है तेस बगसे जिसे नदर करे गाओ सास बुरी कर वास न देवे फिर स्यों मिलन ना दे बुरी सखी सजनी केखो चरण सरेव हर गुर कृपा ते नदर तरी आ विचार मार मन देखया तुम सामीत न अवर कोई ज्यों तू रख तिभगी रहना दो सुख देव करे सोई आसा मनसा दो बिनास्त त्रिगुण आसन रास पई तुरियावस्था गुरमुख पाई है संत सभा की ओट लगी ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप जिस हर हृदय अलख पेव नानक राम नाम मन रत गुरमत पाए सहज सेवा आसा महला पहला पंच पदे मोह कुटुंब मोह सवकार मोह तुम तजो सगल वेकार मोह अर परम तजो तुम वीर साच नाम हृदय रवे शरीर रहाओ सच नाम जा नवन दपाई रोवे पूतना कल पैमाई एत मुए डूबा संसार गुरम कोई उतरे पार एत मुए फिर जूनी पाहे मोहे लागा जम पुर जाहे गुर दिखिया ले जब तब कुमागे ना मो टूटे न थाए पाहे नदर करे ता यो मो जाए नानक हर्षों रह सुमाए आसा महला पहला
ਆਪ ਕਰੇ ਸੱਚ ਅਲਖ ਪਾਰ। ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸਣ ਹਾਰ, ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਹੜ ਕੀਤੇ ਅੰਤ ਵਗੋਵੇ ਰਖਾਓ, ਮਨ ਮੁਕੀ ਮਤ ਕੂੜ ਵਿਆਪੀ। ਬਿਨ ਖਾ ਸਿਮਰਨ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪੀ, ਦੁਰਮ ਤਿਆਗ ਲਾਹ ਕਿਛ ਲੇਵੋ। ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਅਲਖ ਪੇਵੋ, ਐਸਾ ਹਮਾਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਈ। ਗੁਰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਈ, ਸਗਲੀ ਸੌਂਦੀ ਤੋਟਾ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਪਾਵੇ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪ ਦੇ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਪੁਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਪੰਚ ਰਾਸੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ। ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਜੇ ਜੇ ਮਨ ਲਾਗੇ, ਤਉ ਜਮ ਕਾਂ ਕਰੇ ਮੋਸੂ ਆਗੇ ਰਹਾਓ। ਆਸਨ ਰਾਸੀ ਤਉ ਸੁਨਿਆਸੀ, ਜਾਂ ਜੈ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਭੋਗੀ। ਦਇਆ ਦਿਗੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪ ਮਰੇ ਅਵਰਾ ਨਹਿ ਮਾਰੀ। ਇਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੇਸ ਬੋ ਤੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਚੋਜ ਨਾ ਤੇਰੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਕ ਨ ਪਰੀਆਂ ਗੁਣ ਕਰ ਤੋਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਾਗੇ ਹਉ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾਂ, ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਜਾਗੇ ਹਉ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾਂ, ਰਹਾਓ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜੇ ਆਵਾ, ਆਗੇ ਸਹਿ ਭਾਵਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਵਾ। ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਆ ਹੋਏ ਗਾਰੀ ਮਾਈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਹਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਿਸਨਾ ਬੁਝਾਨੀ। ਗੈ ਸੋ ਜੋਗਨ ਤਨ ਪਛਤਾਨੀ, ਅਜੇ ਜਾਗੋ ਆਸ ਪਿਆਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹੋ ਨਿਰਾਸੀ, ਰਹਾਓ। ਹੋ ਮੈਂ ਕੋਏ ਕਰੀ ਸੀ ਗਾਰ, ਤੋ ਕਾਮਣ ਸੇਜੇ ਰਵੇ ਪਤਾਰ। ਤੋ ਨਾਨਕ ਕੰਤੇ ਮਨ ਪਾਵੇ, ਛੋੜ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਖਦਮ ਸੁਮਾਵੇ। ਰਹਾਓ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੇਵ ਕੜੇ ਤਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ। ਤੇ ਸਾਇਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਏਕ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਈ, ਰਹਾਓ। ਸੋ ਰੜੇ ਤਨ ਸਾਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਸਹਿ ਸੁਪਾਏ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਣਿਆ।

सोई जन जान हर गुण सदगी आख वखाण जिन घर सेवया तिन सु पाया सहजेगी घर नाम सुमाया तू आपे करता तेरा किया सब होय तुद बिन दूजा अवर न कोय तू कर कर वेख जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होय।

बैराग ब्रगत पयो हर दर्शन मीत कहताई, जैसे अल कमला बिन रह न सके तैसे मोए हर बिन रहन न जाई। राग शरण जगदीश्वर प्यारे मोए सरदा पूर हर गुसाई, जन नानक कहे मन अंध होत है हर दर्शन निमख दिखाई। राग आसा कर दूजा महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रस्त

को आया वस्त अनूप सुनी लाभाया गुण रास बन पल्ले आनी देख रतन ओ मन लबटानी सा व्यापारी द्वारे आए वखर काढ़ो सौदा कराए रहाओ साहे पठाया साहे पास अमोल रतन अमोला रास विट सुभा।

भाग हो मारो अब हुन सोयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोयो, आंगन मेरे शोभा चंद, निसबसर प्रेसंग आनंद, बस्तर हमारे रंग चलूल।

जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कतो ना जाई, हरहाओ तोट ना आवे, निखुट ना जाए, खाए खर्च मन रहया अघाए, सो सच साहो इस कर हर तन संचाना, इस तन ते सब जग वरसाना, तिन हर तन पाया जिस पुरब लखे का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा मोहल्ला पंजवां, जैसे किसान बोवे किसानी, काती पाकी बाढ़ परानी, जो जन्मे तो जन हो मुआ, गोविंद भगत अस्तर है थिया, रहाओ जिनते सर पर पौसी रात, रहन गई फिर होए प्रभात, माया मोहे तो रहे अपागे, गुर प्रसाद को विरला जागे, कहो नानक गुण गई है नीत, मुख उज्जल हो निर्मल चीत, आसा महला पंजवा, नौनद तेरे

पंजवा हर रस चोट होशे रसमाता कारमय वस्त बार उड़ जाता सुनी न जाई सच अमृत काथा रार करत झूठी लग गाथा रहाओ वजो साहिब का सेव बैरानी ऐसे गुणे अशाद्यो प्राणी ते स्यो लूग जो सद ही संगी।

मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते नाकाम मिल साध संगत पर केवल नाम सरंग जामला पवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै हरहाओ जब तब संजम तरम ना कमाया सेवा साध ना जान्या हरराया कहो नानक हम नीज करमा सरण परे की राखो शर्मा आसा महला पंजवा कुछ बिन अवर नही मैं दूजा तू मेरे मन माही तू साजन संगी प्रा मेरा ताहे जी डराही तुमरी ओट तुम्हारी आसा बैठत उठत सोवत जागत विसर नही तू सास गिरासा रहाओ राख राख शरण प्रव्यापनी अग्न सागर विकराला नानक के सुखदाते सदगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा महला पंजवा हर जन लीने प्रभु छिड़ाए प्रीतम स्यों मेरो

कपूरे, अंध भया सा मिटे रसूरे, हरहाओ जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन त्याया, आसा महला पंजवा बाशत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मे क्यों बुझे बुझाई, ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओ ना बाला बूढ़ा पाई, हरहाओ नानक दास सा शरणाई, गुर प्रसाद को पार पराई, आसा महला पंजवा सदा सदा आत्म परगास, साध संगत हर चरण निवास, राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल सांत सदा सुख पावे, एलबक जाहे सबे मन तेरे, रहाओ कहो नानक जाके।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए गारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने ग्रह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्ये रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक, एक कहे सगला पासारे। जप जप होए सगल साल जन, एक नाम तय बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किस पारा वारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याय तय प्रभु को।

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बहु करता करने गार न जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया ना गोजासी ज्यो हस्ती खाक शाने संत सज्जन सुनो सा मीता झूठा यो पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खाब खा मोए गवा।

परम मोह त्रो सब निकस जबका दर्शन पाया वर्तन नाम नानक सच कीना हर नामे रंग समाया आसा महला पंजवा जन्म जन्म की मलत होवे प्राई अपना की ता पावे ई हां सुख नहीं दर गए टोई जम पुर जाए पचावे निंदक अहला जन्म गवाया पहुंच न सके काहू बात आगे ठौर न पाया रहाओ किरत पया निंदक बपरे का क्या ओ करे बिचारा तहां बेगूता ते कोई न रख ओ किस पे करे बुकारा निंद की गत तथू नागी खसमे ए वे पाना जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुख माना संतन टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सगाई कहो नानक संत खरा राखे निंदक दिगे रुढ़ाई आसा महला पंजवा बाहर तोय अंतर मल मायला दोए ठौर अपने खोए ईहां काम क्रोध मुए व्यापिया आगे मुस मुसरोए गोंद पजन की मत है होरा वर्मी मारी साप ना मरई नाम न सुई डोरा रहाओ माया की किरत छोड़ गवाई भक्ति सार ना जाने वेद शास्त्र कहो तरकन लागा तत् योग ना पछाने उगर गया जैसे खोटा टबुआ नदर सरापा आया अंतर जामी सब खे जाने उसते कांश पाया कूड़ कपट बंच ने मुनियादा बिनस गया तद काले सत सत सत नानक कहया अपने हिरदे देख समाले आसा महला पंजवा उदम करत होवे मन निर्मल नाचे आप निवारे पंच जनाले वस गद रख मन में एक अंकारे तेरा जान नृत करे गुण गावे रबाब पखावज ताल कुंगुरु अनगद शब्द वजावे रखाओ प्रथमे मन प्रबोधे अपना पाछे अवर री जावे राम नाम जप हिरदे जप मुक्ते सगल सुनावे पर संग साधु चरण पखारे संत तूर तन लावे मन तन अर्प तरे गुर आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पेखे लै सरदा ताका जन्म मरण दुख पागे ऐसी निरत नरक निवारे नानक गुरमुख जागे आसा महला पंजवा अदम चंडाली पई ब्रह्मणी सूदी ते सृष्टाई रे पाताली आकाशी सखनी लैबर बूजी खाई रे घर की बलाई अबर सखाई मूसा देख डराई रे अज के वसगुर कीनो केहर कुकर तने लगाई रे रहाओ बाज थूनिया छपरा थामिया नी करया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ो जड़ावा हेवा अचरज लाया रे दादी दाद ना पहुंचन हारा चूपी निरनो पाया रे मार दुलीचे बैठी ले मृतक नयन दखालन ताया रे सोई अजान कहे मैं जाना जानन हार नशाना रे कहो नानक गुर अम्यो पी आया रसक रसक बिगसाना रे आसा महला पंजवा बंधन काट बसारे औगुन अपना बिरद संहारिया होए कृपाल माध पित न्याई बारग जो प्रद पारिया गुर सिख राखे गुर गोपाल काढ़ लिए महा पवजल ते अपनी नजर निहाल रखाओ जाके सिमरन जम ते छुटिए हलत पलत सुख पाईए साध गराज जपो जप रसना नीत नीत गुण गाईए भगत प्रेम परम पद पाया साध संग दुख नाठे छिजे न जाए कि पौ न व्यापे हर तन निर्मल गाठे अंतकाल प्रपय सहाई एत उत रख नहारे प्राण मीत हीर तन मेरे नानक सब बलिहारे आसा महला पंजवा जा तू साहेब ता पौ केहा हौ तुद बिन किसा लाही एक तू ता सब किश है मैं तुद बिन दूजा नाही बाबा बिग देख्या संसार रख्या करो गुसाई मेरे मैं नाम तेरा आधार रहाओ जाने बिरथा सभा मन की और किस पे आग सुनाई है विण नावे सज बौराया नाम मिले सुख पाई है क्या कहिए किस आग सुनाइए जे कहना सो प्रभु जी पास सब कुछ कीता तेरा वर्त सदा सदा तेरी आस जे दे वड्याई ता तेरी वड्याई एत ओत तुझे ते आओ नानक के प्रसदा सुखदाते मैं तान तेरा एक नाओ आसा महला पंजवा
अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर इहो महारस जने पियो जन्म जन्म टूके पै पारे दुर्त बिनासियो परम बियो दर्शन पेखत मैं जियो सुनकर भजन तुम्हारे सतगुर मंत्र मेरा ठार थियो रहाओ तुमरी कृपा ते पयो साध संग यो काय तुम आप कियो दृढ़ कर चरण गए प्रतुमरे हैजे विखिया पई कियो सुख निधान नाम प्रतुमरा यो अविनाशी मंत्र लियो हर कृपा में सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेर लियो तन सो कलयुग साध संकीर्तन गाई है नानक नाम आधार हीओ आसा महला पंजवा आगे ही ते सब किशुआ अवर के जाने ज्ञाना पूर चूक अपना बार्ग बक्सेया पार ब्रह्म भगवाना।

आई जो प्रभु जी मन पानी तू दाना तू सद मेहरवाना ना मिले रंग माणी तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाओ न जाने मेरा आसा महला पंजवा कर कृपा प्रभ अंतर जामी सा संग हर पाईए खोल किवार दिखाले दर्शन पुनरप जन्मन आईए मिलो प्रीतम स्वामी अपने सगले दुख हर ओरे पार ब्रह्म जन दे आराध्या ताके संग तर ओरे रहाओ मां उदयान पाग सागर पे हरग सोग में बसना सदगुर पेट पया मन निर्मल जप अमृत हर रसना तन तन थाप कियो सब अपना कोमल बंधन बंधया गुर प्रसाद पय जन मुक्ति।

पूरे के चरण गए, कोट जन्म के पाप लहे, रतन जन्म यो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी माया, आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सुमारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन हर अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, हरहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना गीताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपने खेती आपे राख, जद कद पेखो एक है ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, हरहाओ आपे सूर किरण विस्तार, तोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाव, दो मिल एक है की नो ठाव, कहो नानक गुर ब्रह्म पौ खोया, अंध रूप सब नयन अलोया, आसा महला पंजवा। उगत सियानप किशु न जाना, दिन रहन तेरा नाम खाना, मैं निर्गुण गुण ना ही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाव मूर्ख मुगध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम तरम न साधा, नाम प्रभु का मने अराधा, किशु न जाना मत मेरी तोरी, विनवत नानक ओढ़ प्रातोरी, आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुर अपनी, कर किरपा रखो सरनाई, मोको देव हरे हर जपनी, हरहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चैनाए, हर माला ताके संग जाए, आसा महला पंजवा। जिसका सब किसका होए, हे जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो करे सोई फल जान के, हाथ निर्मल दास की जुगता, रहाव सगल त्यागर सरणी आया, हे जन काम व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा। जो सो प्रसन्न होयो प्रा मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोय निर्गुण कौ लिहो उधारी, हरहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरु मंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन मसिया घर नमा, आसा महला पंजवा। काम क्रोध अंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, हरहाओ मोह परम्बो जोन पवाया, अस्तर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूप ग्रह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक तो प्रसरणाई, ईहा सुख आगे गद पाई, आसा महला पंजवा। तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे, तू मेरा कर्ता हम सेवक तेरा।

नरक सुर्ग फिर अवतार कहो नानक जो लाया नाम सबल जन्मता का प्रवान। आसा मोहल्ला पंजवा सोए रही प्रभ खबर न जानी और पय बौर पछतानी प्रे प्रेम सहजमन अंध तरोरी प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस कहां करोरी रहाओ। कर्म अमृत आन निसारयो खिसर गयो तुम पर डारयो साध मुहे लादी अंकारे दोष नहीं प्रभ करणे हारे साध संग मिटे परम अंधारे नानक मेली सिरजन हारे। आसा महला पंजवा चरण कमल की आस प्यारे जम कंकर नस गए विचारे तू चित आवे तेरी माया सिमरत नाम सगल रोग खया हराओ। अनक दुख देवे अवरा कहो पहुंच न सके जन तेरे कहो दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी नानक की अरदास सुनी जे केवल नाम हृदय मैं दीजे। आसा महला पंजवा मन तृप्तानो मिटे जंजाल प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद परी बनी जाके गृह सब किस गए पूर्ण हो फेटिया निर्भय तनी रहाओ। नाम दृढ़ाया साध कृपाल मिड़गी भूख महा विकराल ठाकुर अपने की नी दात जलन बुझी मन हो ही सांत मिट गई पाल मन सहे सुमाना नानक पाया नाम खजाना। आसा महला पंजवा ठाकुर स्यों जाकी बने आई भोजन पूर्ण रहे अगाई पशु न थोरा हर भगतन को खात खर्चत दिलशत देवन को रहाओ। जाका तनी अगम गुसाई मानुख की को केत चलाई जाकी सेवा दस अष्ट सिधाई पालक दिष्ट ताकीला गोपाई जा को दया करो मेरे स्वामी कहो नानक नाही तिनकामी। आसा महला पंजवा जो मैं अपना सदगुर त्याया तब मेरे मन मां सुपाया मिट गई गणत बनास्यो संसा नाम।

प्रीत सब निर्मल होए, सुनो मीत ऐसा प्रेम प्यार, जी प्राण घड़ घड़ आधार, रहाओ प्रभु की प्रीत पै सगल निधान, प्रभु की प्रीत हृदय निर्मल नाम, प्रभु की प्रीत स शोभावंत, प्रभु की प्रीत स मिटी है चिंत, प्रभु की प्रीत तो भव जल तरे, प्रभु की प्रीत जमते नहीं डरे, प्रभु की प्रीत सगल उधारे, प्रभु की प्रीत चले संगारे, आपो कोई मिले ना फूले, जिस कृपाल तिस सास संकूले, ओ नानक तेरे कुर्बान, संत ओढ़ पाते।

ताका चवर सब ऊपर चूल ले, ताका तूप सदा प्रफुल ले, काट काट संपट भय रे जाका, अपाग सब संघ है सदा, आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत, जिसे प्राप्त तिस ही लेना, संत चरण ओ आयो शरणा, आचड़े उहर साल गरा।

सर्व सुख पावे, आवर काहू पे बौर ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रभ मनवासी है रहाओ, जाका दान मिखूटे नाही, भली पांत सब सह सुमाही, जाकी बख्सना मेटे कोई, मन वासाई गे सचा सोई, सगल समगरी ग्रे जाके पूरन, प्रभ के सेवक।

ओंकार सतगुर प्रसाद मैं बंदा बै खरीद सच साहेब मेरा जियो पिंड सब किस दा सब किश है तेरा मान निमाने तू तनी तेरा परवासा बिन सचे अनटेक है सो जानो काचा रहाओ तेरा हुकुम अपार है कोई अंत न पाए जिस गुरपूरा पेड़ सी सो चले रजाए चितराई सियाणपा किते काम न आई है तुठा साहेब जो देव है सोई सो पाई है जे लख कर्म कमाई है ई पवे ना बंधा जन नानक कीता नाम धार होर छोड़िया तंदा आसा महला पंजवा सर सुखा मैं पालिया हर जेवड ना कोई गुर तुठे ते पाई है सच साहेब सोई बलिहारी गुर अपने साध सर कुरबाना नाम ना विसरो देखन चसा क्यों कीजे दाना रहाओ भागट सच्चा सोए है जिहरतन अंतर सो छूटे महाजाल ते जिद गुर शब्द निरंतर गुर की महिमा क्या कह गुर विवेक सत सर हो आज युगा दी जुग है जुग पूरा परमेश्वर नाम त्यावो सत सदा हर घर मन रंगे जियो प्राण तन गुरु है नानक कह संगे आसा महला पंजवा साई अलख पार भोरी मन वसे दुख दर्द रोग माए मैंडा हवन से हो वन्या कुर्बान साई अपने होवे अंधकणा मन तन जापने रहाओ बिंदक गाल सुनी सचे तिस तनी सुखी हूँ सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए टेक मुस्ताक पही मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई बेक तेव संसार हब्बा हूं बहारा नानक का पात साहो दिसे जहारा आसा महला पंजवा लाग भगत आराध्य जब ते पियो पियो कवन जूत में लावो निर्गुण बखई जियो तेरी ते गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सब ना के नाथ तेरी सिट सब रहाओ सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर नाम बिहू नड़िया से मरन विसूर विसूर दास दासन पाए मिटिया तिना गौन विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन जैसे पस हरे आओ तैसा संसार सब नानक बंधन काट मलाव आ प्रभ आसा महला पंजवा हब्बे थोक विसार इको ख्याल कर झूठा लाए गुमान मंत्र अर्प तार आड़ पैर सार आहे सिरजनहार तू जीवा तेरी दात किरपा करो मुंह रहाओ तोई कम कमाए जित मुख उजला तोई लगे सच जे तू दे अला जो न टहंदो मूल सो कर रास कर इको चित वसाए कदे ना जाए मर तिना प्यारा राम जो प्रा पाणिया गुर प्रसाद अकथ नानक वखाणिया आसा महला पंजवा जिन्ना ना विसरे नाम से कनेहा खेद न जाणो मूल साई जेया मन तन होए निहाल तुम संग पेटिया सो पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मंड उधारे तिनखे जिन मन मुठा आप पूरे भगत से जिसनु मने आप सोई मानिए प्रगट पुरख प्रवान सब ठाई जानिए दिन सरैन आरात संभाले साहा सहा नानक की लोचा पूर सचे पातशाह आसा महला पंजवा पूर है या सर्वठाए हमारा खसम सोए एक सहब सिर छत।

वन्यन वहन बोतड़ा चरण मन चढ़ लंगीए आड़ पैर गुण गाय साधु संगीए रहाओ भोगे भोग अनेक विण नावे सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया तप्पड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शाह।

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्मना बूझता तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किसको लग जे चीत न आवे।

आसा करनामा महला पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद चितव चितव सर्व सुख पाव आगे पाव के ना पाव एक दा तार सगल है जाजक दूसर कह पे जाव ओ मांगो आन ले जाव सगल शद्र पद एको ठाकुर कौन समसर लाव हराव उठो बैसो रह के ना सको दर्शन खोज खुजाव ब्रह्मादक सनकादक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको मैल दुलपाव आगम आगम अगाध बोध तीमद परय ना पाव ताकी शरण सदपुरख की सदगुर पुरख ते आव पयो कृपाल दयाल प्रभु ठाकुर काट्यो बंद कराव कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म न आव आसा महला पंजवा अंतर गावो बाहर गावो गावो जाग सवारी संग चलना।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुर मन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रह नी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा

मनोरथ सुहाओ तन तन तेरा तू प्रा मेरा हमरे बस किश नाग ज्यों ज्यों रख त्यों त्यों रहना तेरा दिया खागे जन्म जन्म के किल विख कट मजन हर जन तूर पाए भगत परम पौ नस हर नानक सदा हजूर आसा मोहला पंजवा आगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग आप किरपाल किरपा प्रतारी सदगुर बख्शिया हर नाम काल युग उधारिया गुरदेव माल मूत मूड़ जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव रखाओ तू आप करता सब सृट तरता समय रहा सुमाए धर्म राजा बिस्माद होआ सब पई पैरी आए साजुग त्रेता द्वापर पणिए काल युग ऊतमो जुगा माहे अहे कर करे सो अहे कर पाए कोई ना पकड़िए किसे थाए हर जियो सोई करे

और बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। मां बिखादी दुष्ट अपवादी ए पुनीत सिंगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते इनके कुल उधारे कोई ना जाने कोई ना माने छे प्रगट घर द्वारे।

मो कुटुंब दिखे रसमते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास मान मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवां ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोतियन लालन नह नहा नहीं राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन सरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवां गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईते ऊते काट काट काट काट तू ही मोहेना कारण करना तारण करना एक सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवां हर हर नाम अमोला ओ सहज सुहेला हराओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवां अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ नाम पदार्थ हुए सकारत हृदय चरण बसाहे

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तस खोजत पाओ सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीर लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म

ब्रह्म लुकाण एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा आप न जीने तामसी काहे पए उदासा एक बिंद जिदन कर राख दे से जति कहावे बिन गुर शब्द ना छूटगी प्रमे आवे जावे एक गिरगी सेवक साधका गुरमती लागे नाम दान इस नाम गिरड़ हर भगत सो जागे गुर ते दर कर जानिए जो जाए सियाणे नानक नाम न विसरे सचे मन माने आसा महला पहला मनसा मने समायले।

नाम अमोलह तू उत्तम हो नीत सेवक कांडिया नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया आसा महला पहला आमन जाना क्यों रहे तो मेला होई जन्म मरण का दुख कणो निर्शेषता दोई बिन नावे क्या जीवना फिट त्रिगच तराई सतगुर साधना सेवया हर भगत ना पाई हरहाओ आमन जामन तौ रहे पाइये गुरपूरा राम नाम तन रास दे बिन से प्रमकूरा संत जिना को मिल रहे तान तान जस गाये आदि पुरख अपरंपरा गुरमुख घर पाए नडुए सांग बनाया।

दास तुम्हारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आग विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आनी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुगमना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब सच्चा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना हृदय नाम सुमाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन वसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाएगे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिर ममता अगन तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोय न जानी माया मोहे दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तब सार हर जीव मन वस सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिर पवन सोजी होए आप शान घर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उर तारे साची शोभा साध दुआरे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए।

तन मन शीतल मुख उजले, फिर कै पाए प्यार से सुखाली पिर रवे। हमे तिसना मार कर कृपा कर आया, गुर के हेत अपार वर पाया सुहागणी केवल एक मुरार। सबे गुने बगसाए ले ओन मिले मिलनहार, नानक आखण आखिए

ते आई है, ज्ञान प्रगट होए, ए मन मत जाने हर दूर है, सदा वेख अधूर, सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहा भरपूर रहाओ, गुरमुख आप पछाणिया, तिनी एक मन कहाया, सदा रवे तेरे अपना, सच्चे नाम सुख पाया, ए मन तेरा को नहीं, पर वेग शब्द विचार, हर सरनाई पज पौ पाए मोख द्वार, सब सुनिए शब्द बुझिए, सच रखे लिवलाए, सब देखो मैं मारिए, सच्चे महल सुख पाए, इस युग में शोभा नाम की बिननावे शोभ न होए, ए माया की शोभा चार दिहाड़े जांदी बिलम न होए, जिन्नी नाम सारे से मोए मर जागे, हर जात न आयो दिष्टा माए सुमाए, एक आपे बक्स मलायन अन दिन नामे लाए, सच कुमावे सच रहे सच्चे सच सुमागे, बिन शब्दे सुनिए ना देखिए, जग बोला अन्ना परमाए, बिन नावे दुख पाए सी ना मिले तसे रजाए, जिन बाणी से चित लाया सेज निर्मल परमान, नानक नाम तिना कदे ना विसरे ते दर सच्चे जान, आसा महला तीजा शब्दों की भगत जाप दे, जिनकी बाणी सच्ची होए, विचू आप गया नव मनिया सच मिलावा होए, हर हर नाम जन की पत होए, सब तिना का जन्म है तिन मन ने सब कोए, रहाओ हमे मेरा जात है अत क्रोध अवमान, सब मरे ता जात जाए ज्योति ज्योत मिले भगवान, पूरा सदगुर पेटे सबल जन्म हमारा, नाम न मेरे दे पाया परे अखुट पंडारा, आवे इस राशि के व्यापारिये जिन्ना नाम प्यारा, गुरमुख होवे सो तन पाए तिन अंतर शब्द विचारा, भक्ति सार ना जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आप खुआयन जुए बाजी हारी, बिन प्यारे भगत न होवई ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाईए गुर भक्ति मन तीर, जिसनु भगत कराए सो करे गुर शब्द विचार, हृदय एको नाम वस होमे दुबदा मार, भगतां की जद पत एको नाम है आपे लए सवार, सदा सरनाई तिसकी ज्यों पावे त्यों कार्ज सार, भगत निराली अलहादी जापे गुर विचार, नानक नाम

मानुख मर मर जम में पी मर जम दर होए खुवार आ मिलायन से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम सुमाने मुख उजले तिल सच्चे दरबार आसा महला पंजवा अष्टपदिया कार दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गवाए इन बिद नगर उठा मेरे भाई दुर्त गया गुर ज्ञान।

हाथ सहित सुखे सब हाट सा व्यापारी एक थाट जे जिया डन को लय न जगात सगुर कर दीनी तुरकी शाप वखर नाम लड़खेब चिलावो लै लाह गुरम कर आव सदगुर साहो सिख बन जारे पूंजी नाम लेखा साज सुमारे सो वस्ते इत कर

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रखाओ दर्शन की प्यास तनी चितवत अनग प्रकार तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो नाम है रंग जेते माया रंग रस बिरस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम से सुख पुंचे सब ठाए सब जय चलतो पेकिए नेचल घर को नाओ धर्म तराई सास्यो नेचल पा बैठाओ मीत साजन सुत बंद प को होत ना साथ एक निवाहू राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल भोयत पए लग सागर तरे होते हे पेट्यो पूरा सदगुरु साचा प्रस्यो नेह सा तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तु पावे सो फला तेरे पाने कार्ज रास सुख सागर प्रीत मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पेटे परमानंद आसा महला पंजवा।

ब्रह्म प्रसिमरिए प्यारे दर्शन को बल जाओ, जे सिमरत दुख बीसरे प्यारे सो क्यों तजना जाए। क्यों तन वेती संत पे प्यारे प्रीतम दे मिलाए, तुसी गर्भ के आके भी

सो करी प्यारे आवर किश करण न जाए, दिन रैन सब सुहावने प्यारे जे चपिए हर नाओ, साई कार कमावनी प्यारे और मस्तक लेख लिखाए, एको आप वर्तदा प्यारे घट घट रहा समाए, संसार कूप ते उधर ले प्यारे नानक हर शरणाए, राग आसा महला पहला पट्टी लिखी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद ससे सोए सिटिजन साजी सबना साहेब एक पया, सेव तरे चित जिनका लागा आया तिनका सबल पया, मन का गे पूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तौ पड़िया रहाओ, ईवड़ी आद पुरख ए दाता आपे सच्चा सोई, इना अखरा में जो गुरमुख बूझे तेस सिर लेख न होई, ऊड़े उमा ताकी कीजे जाका अंत न पाया, सेवा करे सही फल पावे जिन्नी सच कमाया, गंगे ज्ञान बूझे जे कोई पढ़िया।

आए माया के संगल बंद लया खखे खुंद कार सा आलम कार खरीद जिन खर्च दिया बंधन जाके सब जग बांधया अवरी का नहीं हुकुम पया गगे गोए गाये जन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया ताड़ पांडे जन आवी साजी चाड़ नवागे तई किया कगे काल सेक जे काले शब्द गुरु के लाग रहे बुरा पला जे सम कर जाने एन बद साहेब रम तरह चचे चार वेद जिन साजे चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी पोगी पढ़िया पंडित आप थिया छे छे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाय भुलाई गए आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलया जजे जान मंगत जन जच लग चौरासी तीह पवया एको लेवे एको देवे अवर ना दूजा मैं सुनया झजे चूर मरो क्या प्राणी जो कुछ देना सो दे रहा दे दे वेखे हुकम चलाए ज्यो जिया घर जक पया न्यन्ये नदर करे जा देख दूजा कोई नाही एक ओरा वरया सब थाई एक वसया मन माही टट टंच करो क्या प्राणी तड़ी के मौत के उड़ चलना जुए जमन हारो अपना पाज पड़ो तुम घर सरना ठठे ठाण वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा सही जा निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डडे डंप करो क्या प्राणी जो किश हुआ।

दिया सब नी लिया, तरमी करमी हूं पया, नन्ने ना पोनित पुगे, ना डीठा ना सम्मलया, गली हो सोहा गण पैने, तन तन कबहू मैं मिलया, पपे पासाओ परमेश्वर, वेखण को प्रपंच किया, देखे बूझे सबक जाने, अंतर बाहर रब रहे, फफे फाही सब जग फासा, जम के संगल बंद लया, गुर प्रसादी सेनर उबरे, जे हर शरणागत पज पया।

तन फिरे मिला हुए स्वामी आप कृपा करे सेजा सुहावी संग तिरके सात सर अमृत परे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानक हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बेनंती राम मैं मंत्र घर पावे प्रसंग मराती राम ता प्रेम राती हर बेनंती नाम हर के सुख वसे तो गुण पिछाने ता प्रव जाने गुणे वस अवगुण नसे तुझ बाज एक तेल रह ना सक कह सुन ना तीजे नानका प्रयो प्रयो कर पुकारे रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर वणजारा राम हर नामो वणजड़िया रस मूल अपारा राम मूल अमूलो सज कर टोलो प्रभावे ता मुंद पली एक संग हर के करे रलिया हो पुकारी दरखली कारण कारण समरसरी तर आप कार्य सारे नानक नदरी तन सुहागन शब्द अब साधार हम कर साचा सोयलड़ा प्रभ आयड़े मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लीड़ा दीता राम अपना मर दिया हर वर लिया क्यों पावे त्यों रावे तन मन पिरे आगे शब्द सुभागे कर अमृत फल पावे बुद्ध पाठ ना पाई है बहुत चतराई है।

मनो मेरा मन रत राम प्यारे राम सच साहेब आदि पुरख अपरंपरो तारे राम अगम अगोच अपर अपार पार ब्रह्म प्रधानो आजुगा दी है पी होसी अवर झूठा सा मानो कर्म धर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाणे महर्ष नाम ते आई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सिखाई राम हो मैं ममता माया संग न जाई राम माता पित भाई सुच तराई संग न संपे नारे सायर की पुत्री परघर त्यागी चरण तले विचारे आद पुरख चलत दिखाया जे देखा तै सोई नानक हर की भगत न छोड़ो सहजे होए सोई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच समाले राम अगुण मेड़ चले

एक मन त्याया तीन सुख पाया ते विरले संसार जियो जिन जगत्यो पाया तंदे लाया किसे विटो कुर्बान जियो ताकि सेव करीजे लहा लीजे हर दरगे पाई गे मान जियो हर दरगे मान सोई जन पावे जो नर एक पछाणे ओ नवंद पावे गुरमत घर त्यावे नित हर गुण आख वखाणे ऐस नाथ से का लीजे हर उत्तम पुरख प्रधान जियो जिन जगत पाया तंदे लाया हौ तसे बेटो कुर्बान जियो नाम लैन से सोह है तीन सुख फल होवे मन ने।

जाए स्वामी तिन फल तोट न आवे, तिन जरा न मरना नरक न परना, जो हर नाम ते आवे हर हर करे से सूके नाही, नानक पीड़ ना खाए जियो, नाम लयन से सोह है तिन सुख पल होवे, मन सेजन जाए जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला पहला शांत कर तीजा, तू सुन हरना कालिया की वाड़िए राम, बिखबल मीठा चार दिन फिर होवे ताता राम, फिर होए ताता खरा माता ना बिन परतापे, ओ जेव सायर दे लहरी बिजली जिवे चमके, हर बाज राखा कोए नाही सोए तुझे बिसारिया, सत कहे नानक चेतरे मन मरे हरना कालिया, पावरा फूल पहंतिया दुख अदपारी राम, मैं गुर पूछा अपना साचा बिचारी राम, बिचार सगुर मुझे पूछया पवल बेली रातो, सूरज चढ़या पिंड पड़या तेल तामन तातो, जाऊ मग बादा खाए चोटा शब्द बिन बेता लिया, सच कहे नानक चेतरे मन मरे पवरा कालिया, मेरे जीड़िया परदेसिया इत पवे जंजा ले राम, साचा साय मन मसे की फासे जम जा ले राम, मछली विशुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्धक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया, परत कार चित लाए हरस्यो छोड़ मनो अंदेसिया, सद कहे नानक चेतरे मन जीड़िया परदेसिया, नदियां माव शून्या मेला संजोगी राम, जुग जुग मीठा विस परे को जाने जोगी राम, कोई सहज जाने हर पछाणे सदगुरु जिन चेतया, बिन नाम हर के परम पूले पचे मुद अचेतया, हर ना भगत नारे साचा से अंत ताही रुन्या, सद कहे नानक शब्द साचे मेल चिरी विशुन्या, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला तीजा शंत कर पहला, हम करे साचा सोहला साचे शब्द सुहाया राम, तान तिर मेल पया प्रभ आप मिलाया राम, प्रभ आप मिलाया सच मन वसाया, कामन सहजे माती गुर शब्द सी।

कहो नानक गुर शब्द सवारी, सफलयो जन्म सवाया, दूजड़े कामण परम पुली, हर वरना पाए राम, कामण गुण नाही, बिरथा जन्म गवाए राम, बिरथा जन्म गवाए, मानमुख एयाणी, अवगुणवंती चूरे, अपना सदगुर सेव सदा सुख पाया, ता तिर मिलिया हदूरे, देख तिर विगसी अंदरों सरसी, सच्चे शब्द सुभाए, नानक विण नावे कामण परम पुलाणी, मिल प्रीतम सुख पाए, फिर संग कामण जानिया, गुरमेल मिलाई राम, अंतर शब्द मिली, सहजे तबत बुझाई राम, शब्द तबत बुझाई अंतर सांत आई, सहजे हारस चाखिया, मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणे, सच्चे शब्द सुपाखिया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, एकी मुक्त न पाई, नानक बिन भगती जग बौराना, सच्चे शब्द मिलाई, सा तन मन अंध पया, हर जीव मेल प्यारे राम, सा तन हर के रस रसी, गुर के शब्द अपारे राम, शब्द पारे मिले प्यारे, सदा गुण सारे मन मसे, छेद सुहावी जां तिर रावी, मिल प्रीतम अवगुण नसे, जित कर नाम हर सदा त्याई है, सोहिलड़ा जुग चारे,

तेरा गंढ लग गुरमंग सदा समाले। यों कहे नानक जय मन तू तामदा तय हर तेरे सदा नाले। सदगुर मिले ताकत थम्या निकर बसया आए, नाम हिया जे नाम ले नाम रहे सुमाए। ताकत थम्या सदगुर मिले दसवां द्वार पाया, तिथे अमृत भोजन सहितन उपजे। जित शब्द जगत थम रखाया ते अनेक वाजे सदा अंध है सच्चे रहा सुमाए। यों कहे नानक सदगुर मिले धारत थम्या निकर वस्या आए। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंग मान। मूल पछाणे ता सो जाने मरण जीवन की सोझी होई, गुर प्रसादी एको जाने ता दूजा पाओ ना होई। मन सांत आई वजी वधाई ता होआ परवान, यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गर्भ अटिया गर्भ लदया जाहे, माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाहे। गर्भ लागा जाए मुगद मन अंत गया पछतावे, अहंकार सना रोग लगा बिरथा जन्म गवावे। मनमुख मुगद चेते नाही अगे गया पछतावे, क्यों कहे नानक मन तू गर्भ अटिया गर्भ लदया जावे। मन तू मत मान करे के हौ खज जानदा गुरमुख निमाणा हो। अंतर अज्ञान हौ बुद्ध है सच शब्द मलखो हो। ओ निमाणा सदगुरु अगे मत किश आप लखावे, अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे। सदगुर के पाणे करे कार सदगुर के पाणे लग रहो, यों कहे नानक आप छड सुख पावे मन निमाणा होए रहो। तन सो वेला जित में सदगुर मिलया सो सो चित आया, मां आनंद सहज पया मन तन सुख पाया। सो सो चित आया मन वसाया अवगुण सब विसारे, जांच पाणा गुण प्रगट होए। सतगुर आप सवारे से जन प्रवान होए, जिन्नी एक नाम दिड़या दुतिया पाओ चुकाया। यों कहे नानक तन सोवेला जित मैं सतगुर मिलया सो सो चित आया। एक जंत परम फुले तिन सह आप फुलाए, दूजे पाए फिरे होमे कर्म कुमाए। तिन सह आप फुलाए कुमार्ग पाए, इनका किश ना वसाई। तिन की गत अवगत तू है जाने, जिन ए रचन रचाई। हुगम तेरा खरा पारा गुरमुख किसे बुझाए, क्यों कहे नानक क्या जंत विचारे। जा तुझ परम फुलाए

हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम हर जपिए सतगुर पाए जियो हर घर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पद निर्वाण जियो हर प्रीत लगाई हर नाम सखाई प्रभु चूका आमन जान जियो।

फिर जन्म है नानक हर पाए तू हर तेरा सबको अब तुद उपाए राम राजे किस हाथ किसे दे किस नाही सब चले चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सर गुर पेटे।

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमाणी सुख सोय लड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभु आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभु बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक।

तिस ठाकुर सरणी बल बुद्ध ज्ञान प्यान अपना आप नाम जपाया साध संगत आप होआ आप जगत तराया राख लीए रखन हारे सदा निर्मल करनी नानक नरक ना जाए कबहु हर संत हर की सरणी।

ताप चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे। मिल चाओ चाइले प्राण सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे। जाचक जन राखत मान प्रमाण पूर्ण दुख बदीरन सगल इश पूजंतिया। हर कंठ लागे दिस भागे मेरे नहा सेज सोहंतिया। प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी सगल करमल पय खान। बिनवंत नानक मेरी आस पूरन

तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजय।

पौड़ी, बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया, सतगुर विते आप रखियोन, कर प्रगटे आख सुनाया, सतगुर मिले है सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया, उत्तम यो विचार है, जिन सच्चे स्यो चित लाया, जग जीवन दाता पाया, श्लोक महला पहला, हौ मिच आया हौ मिच गया, हौ मिच जमया हौ मिच मोवा, हौ मिच दिता हौ मिच लया, हौ मिच खटिया हौ मिच गया, हौ मिच सचियार कूड़ियार, हौ मिच पाप पुन विचार, हौ मिच नरक सुर्ग अवतार, हौ मिच हसे हौ मिच रोवे, हौ मिच परिये हौ मिच तोवे, हौ मिच जाति जिनसी खोवे, हौ मिच मूर्ख हौ मिच सियाणा, मोह मुक्त की सार न जाना, हौ मिच माया हौ मिच छाया, हौ में कर कर जनते उपाया, हौ में बूझे तांदर सूझे, ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझे, नानक हुक्मी लिखिए लेख, जेहा वेखे तेहा वेख, महला दूजा हौ में एहा जात है, हौ में कर्म कमाहे, हौ में एही बंदना फिर जो नी पाहे, हौ में कित्थों उपजे, इत संजम ए जाए, हौ में एहो हुक्म है, पये किरत फिराहे, हौ में दीर्घ रोग है, दारू पी इस माहे, कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कुमाहे, नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाहे, पौड़ी सेव कीती संतोखी, जिनी सचो सच तिहाया, ओ नी मंदे पैर ना रखियो, कर सुकृत तर्म कमाया, ओ नी दुनिया तोड़े बंधना, अन पानी थोड़ा खाया, तू बगसी सी अगला, निज देवे चढ़े सुवाया, वड्याई वड्डा पाया, श्लोक महला पहला।

पढ़त गुणत ऐसे सब मारे, किन्हू खबर न जानी रहाओ। सगत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदोगा पाई। जौरे खुदाए मोए तुर्क करेगा, अपन ही कट जाई।

हंस अकेला जाई, कहेत कबीर सुनो रे संत, ऐसा गर कहताई, इस बंदे सिर जुल्म होत है,

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भोजंग बलयो अरहाओ चूके सर्वर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फेरे चरण सीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन शुद्ध नहीं।

साखी शब्द सुरत नहीं उपजे, खेंच तेरी सब लीना, श्रवणन विकल पय संग तेरे, इंद्री का फल थका, चरण रहे कर टर्क परे है, मुखो ननिक सह बसा, थाके पंच दूत सब तस्कर,

राम राम राम रमे रम रही है, साग स्यो पूल नहीं कहिए रघाओ। कौआ कांक पूर चिराए, कह बिशियर को दूध पियाए। सत संगत मिल बबेक बुद होई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साक

की आस करे जम निहारे सासा। बारी गरी संसार कबीरा चेत टाल पासा आसा। तन रैनी मन पुनरप कर हो

आस बड़ पाग हमारा तुर नार मुनजन कौतक आए कोड़ ते तीस उजाना कह कबीर मोए ब्याए चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की।

कियो सिंगार मिलन कह ताई, हर न मिले जग जीवन गुसाई, हर मेरो पेर हर की भौरिया, हरा बड़े मैं तनक लहोरिया रहाओ, तन पे

गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब गुरगम दिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सौरे पेई है बुरी आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी पली सरी मोई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ कौ कबीर जब लौरी आई बड़ी का सुहाग टरेओ लौरी संग पई अब मेरे जेठी और तरेओ आसा मेरी बौरिया को तनिया नाओ ले राख्यो राम जनिया नाओ एन मुंडियन मेरा कर तुंदरावा बिटवे राम रम।

संत कथा रस संत प्रेम माजे दीजे देवा देव रखाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगनी और एक मांगो भगत चिंता मन जनी लखावो असंत पापी सन रविदास पणे जो जाने सो जान संत अनंत अंतर नाही आसा तुम चंदन हम एरंड बापरे संग तुम्हारे बासा नीच रूख ते ऊज पए है गंध सुगंध निवासा माधव सत्संगत शरण तुम्हारी हम अवगुण तुम्हें उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपील हम परे जस कीरा सत्संगत मिल रही है माधो जय

माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना कौशन बंद हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस गए शरीर। रहाओ भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे गृहस्थ उदास रहाई।

कल्याण आनंद रूप होई है। उबरे बाल गोपाल हरहाओ मिल वर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवां माल पिता भाई सुध बंधप।

साध संग नानक दर्स पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रसे तीरंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कब हूं जाई हराओ करत करत अनकबो पाती

अग परे गुर शरण तुम्हारी मैं अवर ना दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की तुझ गी स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो किस रहे ना दिसे।

दुर्मत व्यापे जिन अंतरम हो गुबारी, संत जिना की कथा ना पावे ओए डूबे सान परवारी। निंदक निंदा करमल तोवे ओ माल पग माया तारी, संत जिना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी। यो प्रपंच खेल किया सब करते, हर करते सब कल तारी, हर एको सूत वरते।

क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत राघ परमानंद जलत अनक तरंग माय गुर ज्ञान।

भव अमृत नाम है गुरमुख पावे कोय भव कर्मी पाईए आप दया कर दे। नानक भव गुरमुख पाईए अनदिन नाम लए मोहल्ला तीजा बिन सतगुर सेवे सांत न आवई दूजी ना ही जाए। जे बो तेरा लोचिए विण करमे ना पाया जाए जिन्ना अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए। जमन मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए जिन्ना सगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है। तिन जम की तलब ना होवई नावे दुख सहाग नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समा

तुद ध्यान बेद कतेबा सन खड़े गंती गणी न जाए तेरे दर पड़े ब्रह्मे तुद ध्यान इंद्र इंद्रासना शंकर बिशन अवतार हर जस मुख पणा पीर पे कंबर शेख मसायक औलिए ओत पोत निरंकार घट घट मौलिए कूढ़ो करे विनाश धर्मे तगिए जित जित लाहे आप तित तित लगिए श्लोक महला पंजवा चंग्याई आलक करे बुरियाई होए शेर नानक अजकल आवसी गाफल फागी पेर महला पंजवा कितिया कुटंग गुजा थिए ना गेत नानक तय सै टकया मन

क्रोध लोभ छोड़िए दीजे अगन जलाए जीव दयान जापिए नानक साचा नाओ मोहल्ला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

मन को होए संतोख तिहाइए सदा हर तो लगा सतगुर सेव जा को कर्म तोर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सो थान।

क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट बस ना निवार राख लियो प्रभे अपने नानक सरबरे हार महला पंजवां खांदियां खांदियां मोह कठा पए नंदियां सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीवया जिन

आमन जान रहे जन्मना तहा मार साहेब सेवक एक एक दृष्टाया गुर प्रसाद नानक सत्य सुमाया शुद्ध अराग गुजरी भगता की बाणी एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री कबीर जीओ का चौपदा कर दूजा दूजा चार पाव दो सिंह गुंग मुख तब कैसे गुण गई है उठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूंड लुकई है हर बिन बैल बेराने होई है फाटे नाकन टूटे कदन कोदो को पुस गई है रखाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगई है जन भगतन को कहो न मानो कियो अपनो पई है दो सुख करत महाप्रभुडो अनक जोन परमई है रतन जन्म खोयो प्रभिसरयो यो अवसर कद पई है प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गात बिन।

पार्क कैसे जीवे रग राई, तन ना बोना सब तजो है कबीर। हर का नाम लिख लियो शरीर रखाओ, जब लग तागा बाहो बेही, तब लग बिसरे राम स्नेही, ओशी मत मेरी जात जुला। हर का नाम लयो मैं लाह, कहत कबीर।

देत जप नर सगल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सबटं पाव भूत सर्वगतं एक ओंकार सत

सा घड़ी सो मोद सबल है मेरी जिंदड़ी है। जित हर मेरा चित आवे राम, जन नानक नाम ते आया मेरी जिंदड़ी है। जम कंकर नेड़न आवे राम, हर वेखे सुने नित सब कुछ मेरी जिंदड़ी है। सो डरे जिन पाप कमते राम, जे अंतर हिरदा सुध है मेरी जिंदड़ी है। तेन जान सब डर सुट कते राम, हा निरपो नाम पतीजा मेरी जिंदड़ी है। सब चक मारन दुट को पते राम, गुरपुरा नानक सेव्या मेरी जिंदड़ी है। जिन पैरी आन सब कते राम, सो ऐस हर नित सेवी है मेरी जिंदड़ी है। जो सबदू साहेब वड्डा राम, जिन एक मन एक आराध्या मेरी जिंदड़ी है। तिना नाही किसे दी किस चड्डा राम, गुर सेवे हर महल पाया मेरी जिंदड़ी है। चख मारन सब निंदक कंडा राम, जन नानक नाम तिहाया मेरी जिंदड़ी है। तुर मस्तक हर लिख छड्डा राम, बिहागड़ा महला चौथा सब जीतरे तू वरतदा मेरे हर प्रव। तू जाने जो जी कमाई गए राम, हर अंत बार नाल गए मेरी जिंदड़ी है। सा वेखे मन मुकुराई गए राम, मन मुखा नू हर दूर गए मेरी जिंदड़ी है। सब बिरत

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइये सहज सोइये प्रभ पलक पेखत नव निधे। गृह लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाइये। नाक पैम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइये। संतन कै प्रसाद हर घर पाया राम। इश पुनी मन शांत तप्त बुझाया राम। सबला सो दिनस रहने सुहावी अंध

जिन हर घर संजोग मिलाया बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे अन दिन नाम वखाणा राम। अमृत बाणी उच्चरा हर जस।

मंगै हर भगत पाइये प्रभत आइये जाए मिल गए हर जना। मान मोह विकार तजिए अर्प तन तन इहो मना बड़ पुरख पूरन गुण संपूरन प्रम पीत हर हर मिल फगै। बिनवंत नानक सुन मंत्र सगिए हर नाम नित नित नित जपे हर नार सुहागणे।

तज ना जाई प्रप्रीत मन तन पानी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत पए किस कहन न जाई राम जिस ते उपजेड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल मईल एक रव्या नै दूजा दृष्टाया बण त्रैण तिरपवन पूर पूरन कीमत कहन न जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन ए बणत बनाई बिहागड़ा महला पंजवा खोजत संत फिरे प्रभ प्राण अधारे राम तान तन खीन पया बिन मिलत प्यारे राम प्रा मिलो प्यारे मया तारे कर दया।

चात्र हर बूंद मांगे, जब जीवा हर घर चरना, अमे सरोवरो पियो, हर घर न माराम, संत संग मिले, जब पूर्ण का माराम, सब काम पूर्ण दुख बदीरन, हर निमख मनो ना बिसरै, आनंद अनदन सदा साचा, सर्वगुण जगदीसरै।

कोड अपराध परे ई तेरे चेरे राम दुख हरन कृपा करन मोहन कल कले से पंजना शरण ते ई रख लिहो मेरी सर्व वै निरंजना सुनत पेखत संग सब कै

सहे सो सियाणप उपाव धाके जे भावत तै जाही आदि अंत मद पूरन सर्वत्र कड़कटियाही। बिनवंत नानक जिन सा संगम से पासे ती कर जाही नरपत जान गयो सेवक सियाणे राम। सरपर विछड़ना मोय पछताने राम हर चंदौरी देख पूला का अस्तित पाई है। बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है। हौ हौ करतना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने। बिनवंत नानक बिन नाम हर के

बंधन तोड़े सच वस, अज्ञान अंधेरा जाए, सब किस देख तिसे का जिन किया तन साज, नानक सरण करतार की करता राखे लाज, पौड़ी जदों आपे थाड़ किया बै करते, तदों पुछना सेवक बिया, तदों क्या को लेवे क्या को देवे, जा अवर ना दूजा किया, फिर आपे जगत उपाया करते, दान सबना को दिया, आपे सेव बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करे सोतिया, श्लोक महला तीजा, गुरमुख प्रसे

से आपे सुगण स्वरूप से आनी अपना चोज कर वेखे आपे आपे सबना जिया काहे जानी। श्लोक महला तीजा एहा संध्या प्रवान है जित हर प्रम मेरा चित आवे हरसो प्रीत उपजे माया मोह जलावे गुर प्रसादी दुबदा मरे मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार नानक संध्या करे मनमुखी जियो ना टिके मर जम्मे हुए खुवार। महला तीजा प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी मेरी प्यास न जाए नानक सब गुर मिले है, मेरी प्यास गई फिर पाया कर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकुर दास पया आपे दस अठ वर्ण उपायन आ ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे छोड़े आपे बगसे करे दया आपे पुल न पुल्ले कभी सब सच तपापस सच थया आपे जिना बुझाए गुरमुख इन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा हर नाम न सिमरे साध संग तैतन उड़े खेहे जिन कीती तिसे ना जानई नानक फिट अलूनी दे। महला पंजवा खड़ बसे चरणार बिंद रसना जपे गोपाल नानक सुप्रासिम।

राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुल आ जाए। कीमत कने न पाई, किते न ले आ जाए। गुर कै शब्द पेदया, इन गिद वसया मन आए। नानक आप अमयो है।

ए मन यो तन नाम है जित सदा सदा सुख होए टोटा मूल न आवई लाहा सदगी होए खाद है खर्चे टोट न आवई सदा सदा ओ दे सहसा मूल न होवई हांत कदे न होए नानक गुरमुख पाई है जा को नदर करे पौड़ी आपे सब कट अंदर आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जहर जो शक्ति गोबार कर वर्त्या सुनहर ओथे वेद पुराण ना सास्ता आपे हार नर हर बैठा ताड़ी लाए आप सब दूगी बाहर अपनी मित आप।

तू मूले भूले अखुट्टी जाही। नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, वे जा आ डुबे तुम कहां तरनहार। पौड़ी सब क्यों तेरे वस है, तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो। श्लोक महला तीजा, सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए। महला तीजा, सो योगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ते योगी की नगरी सब को वस, पेखी जोग ना होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए। पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सूखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हर संतारे नार, होर दा तार ना सुजई।

निर्मल नाम से मन आए, परम में भूला फिरे संसार, मर जन्मे जम करे खुवार, नानक से बड़ भागी जिन घर नाम के आया, गुर प्रसादी मन मसाया, वढ़हंस महला तीजा, हम में नावे नार विरोध है, दोना वसे एक ठाए, हम में जो सेवा ना हो गई कामन बिरथा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मने ता हर मिले ता विचो हम में जाए रखाओ, हम में सब शरीर है, हम में ओपत होए, हम में वड़ा गुबार है, हम में विच बुझ न सके कोए, हम में विच भगत न हो वही हुक्म ना बुझिया जाए, हम में विच जियो बंद है, नाम ना वसे मने आए, नानक सतगुर मिले हम में गई ता सच वसया मन आए, सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए, वढ़हंस महला चौथा कार पहला एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद सेज एक को प्रभ ठाकुर, गुरमुख हर रावे सुख सागर।

तन तन तन सुहागण जिन तिरावेड़ा सर सवरा हौ जाय पुछा सुहाग सुहागण तुसी क्यों पिर पायड़ा पा मेरा मैं ऊपर नदर करी पिर सच मैं छोडेड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का।

नित पखा फेरी सेव कमावा, इस आगे पानी टोवा। नेतन सेव करी हर जन की, जो हर हर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ट पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित

सो हर घर सदा संभाले, सो हर घर नाम सदा सदा संभाले, जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जान हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया, वढ़हंस महला।

कोट कोट लख तावे एक तिल ताका मैल न पावे सुहावी कौन सो वेला जित प्रमेला रहाओ लाख भगत जा को आराध लाख तपीसर तब की साध

सार संघर अमृत पीजे ना जू मरे न कबहू चीजे वड़भागी गुर पूरा पाईए गुर कृपा ते प्रभु त्याई ए रखाओ रतन जवाहर हर मान कलाला सेमर सेमर पा पए निहाला जत कद पेखो साधु सरना हार गुण गाए निर्मल मन करना घड़ घड़ अंतर मेरा स्वामी उठा नानक नाम पाया प्रतूठा वढ़हंस महला पंजवा।

हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम पय हर की सरनाई पाथर डुबदा काट लिया साची वड़ियाई बिग से अमृत पय गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पय अंतरवासना वसाई मानस जन्म दुलंब है जग में खटिया आए पूरे भाग सतगुर मिले हर नाम ते आए मनमुख पूले बिख लगे अहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखु हर हर सबको करे विरले हिरदे वसाया नानक जिनके हिरदे वसया मोख मुक्त तिन पाया वढ़ांस महला पहला शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया कूड़ विगाड़ काहे नाई है नाता सो प्रवान सच कमाई है जब साज अंदर होए सच ताम साचा पाई है लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है जिथे जाए बही है भला कही है

ब्राह्मणा सब उपाइगन आप आपे नजर करे, कौड़ा कोई ना मांग मीठा सा मांग, सब कोई मीठा मांग देख, खसम भावे सो करे, किस पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिले कर्म होआ तुर कदे, सब उपाइगन आप आपे नजर करे, वढ़ांस महला पहला करो दया तेरा नाम खाना, सब उपाइगे आप आपे सर्ब सुमाना, सर्बे सुमाना आप तू है उपाय तंदे लाइया, एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवाइया, लोभ मोह तुझ किया मीठ एत परम फुलाना, सदा दया करो अपनी ताम नाम खाना, नाम तेरा है सच्चा सदा मैं मन पाना, दुख गया सुख आए सुमाना, गावन सुर नार सुगड़ सुजाना, सुर नार सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे, माया मोहे चेते नाही अहला जन्म गवावे,

निरकर अवस्था पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पेर रलिया लाजो बन बाला आंदना कंत सवारी हर वर सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हारंग राती जा चले सदगुर पाए वढ़ांस महला तीजा गुरमुख सवा पार भला।

गुण संग्रह अवगुण विकण आपे आप छाण गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे सदरस तीजे नानक घर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस पुंच तू लाहा लय परथाए राम लाहा परथाए घर मन नमसाए।

बीज मन अंदर सत्य शब्द सुखाए, हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम। गुरमति मन कर वसया सत्य शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक भागो सद बैरागो ताचर ते विचारी। ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी, साचे शब्द लाग मत उपजे गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम। गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा। सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवारण हारा, पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया सुमाई, वढ़ांस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो। अपने कर तू सुख वस होए न सके जम काल जियो, काल जाल जम जोए न सके साचे शब्द लिवलाए। सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए, दूजे पाए परम विभूति मन मुखमोही जमकाल। कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल, मन मेरे अंत तेरे निधान गए बाहर वस्त ना पाल। जो पावे सो पूछ तू गुरमुख नदर निहाल, गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सिखाई। मनमुख अंदले ज्ञान में गुणे दूजे पाए खुवाई, बिन नावे को छूटे नाही साबादी जमकाल। नानक अंतर तेरे निदान है तू बार वस्त ना पाल, मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा। सतगुरु सेवने अपना अंतर शब्द अपारा, अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौन दपाई। मन माया मोवे आपे दू संतापे दूजे पद गवाई, होमे मार सच शब्द सुमाने सच रते अदकाई। नानक मानस जन्म दुलंब है सदगुर बूझ बुझाई, मन मेरे सदगुर सेवने अपना से जन्मड भागी राम। जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम, से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया। मत नेचल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम खाणिया, एक कामन हितकारी माया मुहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे। नानक सहजे सेवे गुर अपना से पूरे वडभागे, वढ़ांस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सतगुर दिया बुझाई राम। ला लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम, गुण में गुणी समाए जिस आप बुझाए। ला भगत सह सारे बिन भगती सुख ना होई, दूजे पद खोई गुरमत नाम आधारे। वखर नाम सदा लाभ है जिसनु एत वापार लाए, रतन पदार्थ वणजिए जा सतगुर दे बुझाए। माया मोह सब दुख है खोटा यो वापार राम, कूड़ बोल बिकामणी बहु वधे विकारा राम। बहु वधे विकारा सहसा यो संसार बिन नावे पद खोई, पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणे बिन बूझे सुख ना होई। आमन जाना कदे ना चूके माया मोह प्यारा, माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा।

सदगुरु ज्ञान खड़ग हद तीना यम कंकर मार बिदारे हर प्रा कृपा धारी सुखदाते दुख लाते पाव संतापा सुन गुरमुख नाम सा बिनसे होमे पापा जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया आरोगत पए शरीरा अन दिन सह समाध कर लागी हर जपया गैर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया तिन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरे मन पाया हर तारो कृपा कर कृपा लियो उबारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे हर दयाल शरणाया तू दुख पंजन सर्व सुख दाता हम पात्र तरे तराया सदगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारे हर तारो कृपा कर कृपा लियो उबारे राम वढांस महला चौथा कोड़िया एक ओंकार सदगुर प्रसाद दे तेजन जी राम पाइया राम तन मानस जन्म पुन पाइया राम मान जन्म वड़ पुन ने पाया देसो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया ए देसो बाकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वड़ भागी पाई नाम सकाई जन नानक राम्यो पाईया

ठाकुर माने से प्रधान हर से तीरंग रहते हर से अघाए सह सुमाए घट कर मैया जाते से ही सज्जन संत से सुविए ठाकुर अपने पाने कहो नानक जिन हर पा डिटा तिन कैसल कुरबाने सलोक दे अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूणिया नानक सबल जनम जय कड़ उठा सच तनी संत तिन खनिये वन्या जिन मेरा हर पा डिठा राम जन चाह अगाने हार घर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा अम्य बूठा सुख पय दुख नास परम विनाश तन ते जब जगदीश ईसै जय जय मोह रहित विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तन खनिए वन्या जिन कड़ मेरा घर प्रभूटा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से ही कंडया नानक जाने सत साई संतना बारा शंत मिल जल जले खटाना राम संग ज्योति ज्योत मिला ना राम समाए पूर्ण पुरख करते आप आपे जानिए ते सुन सहज समाध लागी एक एक वखाणिए आप गुप्ता आप मुक्ता आप आप वखाना नानक प्रम पै गुण बिना से मिल जल जले खटाना वढ़हंस महला पंजवा प्रभ करण कान सुमरथा राम रख जगत सगल देखथा राम समरथ सरणा जोग स्वामी कृपा ने सुखदाता हाँ कुर्बानी दस तेरे जिनी एक पछाता वर्ण चिन्ह ना जाए लखया कथन ते अकथा बिनवंत नांग सुनो बिनती प्रभ करण कान सुमरथा ए जी तेरे तू करता राम प्रभ दुख दर्द प्रम हरता राम प्रम दुख दर्द निवार खिन मैं रख लेहो दीन दयाला मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो शरण आवे गुण निदान पावे सो बौड़ जन्म ना मरता बिनवंत नानक दास तेरा सब जीत रे तू करता आठ पैर घर त्याई गए राम मन इच्छेड़ा फल पाई गए राम मन इश पाई गए प्रभ ते आई है मिटे जम के त्रासा गोविंद गाया सा संगाया पई पूर्ण आसा तज मान मोह विकार सगले प्रभु कै मन पाई है बिनवंत नानक दिन सरैणी सदा घर घर त्याई है दर वाजे अनहद वाजे राम काट काट घर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा बेराजे अगमे गोचरी उच्चा गुण बेअंत किस कहन न जाई कोई न सके पहुचा आप उपाय आप प्रतपाले जी जंत सब साजे बिनवंत नानक सुख ना भगती दर वजे अनखद वाजे राग बढ़हंस महला पहला कार पंजवा अलहानिया एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद तन सरंदा सच्चा पातशाहो जिन जग तन दे लाया मोलत पुन्नी पाई परी जानी एड़ा कत चलाया जानी कत चलाया लिखिया आया रुन्ने वीर सवाए काया हंसती आवे छोड़ा जांदर पुन्ने मेरी माए जेगा लिखिया तेगा पाया जेगा पुरब कुमाया तन सरंदा सच्चा पातशाहो जिन जग तन दे लाया साहेब सिमरो मेरे पाई हो सबना यो पयाना इथे तंदा कूड़ा चार देहा आगे सर पर जाना आगे सर पर जाना ज्यो मेहमाना काहे गर्व की जय जित सेवे दरगे सुख पाई है नाम से काली जय आगे हुक्म ना चले मूले सिर सिर क्या विखाना साहिब सिमरो मेरे पाई हो सबना यो पयाना ज्योत पावे समृत सोचिए हिलड़ा यो संसारो जल थल मई लाभ रहा

गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बनजारो सदड़े आए तिना जानिया हुकम सत्य करतारो नारी पुरख विछुनिया विछड़िया मिलन हारो रूप ना जाने सोनिए हुकबदी सिरकारो बालक बिरत ना जाननी तोड़न खेत प्यारो नाउदर ठाके हुकम सच्चे हंस गया गैनारे सातन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया मितगड़ा अंगरड़े बारे सुरतमुई मर माइये मैरुनी दरबारे रोवो कंत मिह लियो सच्चे के गुण सारे जाल माल जानी ना भालिया कपड़ पट अंबारे वाजे वजे सच्ची बाणिया पंच मुए मन मारे जानी विछुनड़े मेरा मरण पया त्रिग जीवन संसारे जीवत मरे सो जानिए तेरे सचड़े खेत प्यारे तुसी रोवो रोवन आई हो झूठ मुठी संसारे हो मुठड़ी तंदे तामणिया कर छोड़ी विदन कार कर कर कंत महेलिया रूड़े गेत प्यारे मैं पिर सच सालाना हो रैसेड़ी ना पतारे गुरमिलिया वेस पलटिया सातन सासी गारो आवो मिलो सहेली हो सिमरो सिरजन हारो बैयर नाम सुहागनी सच सुवार नहारो गावो गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो वढ़ांस महला पहला जिन जग सिरज समाया सो साहेब कुदरत जानो वा सचड़ा दूर ना पालिए कड़ कड़ शब्द पछाणो वा सच शब्द पछाण।

अंतर सहज समाधि तिर रहया पर पूरे वेख हदूरे रंग माने सहज सुपाए जिन्नी अपना कंत पछाणिया हों तिन पूछो संता जाए फिर ओम सुनिया भी मिले।

ते वढ़ांस है सच नाम उर तार सच संग्रह सच सच रह सचे नाम प्यार सदा निर्मल मैल ना लगई नदर की पी करतार नानक हों तिन कह बलिहारण जो

कारण कारण समर्थ है सह सृजनहारे। जिस तू मिले प्यारिया सो तुद मिले गुरमुख विचारे। हों बलिहारी सतगुर अपने जिन मेरा।

बाणो कोई नस पज निकले, हर दी बाणो कोई किथे जाया। तो ऐसा हर दी बाण मसिया, भगता के हिरदय तेन रहंदे खोंदे आण। ता भगता अगे खलवाया, हर नावे की वड्याई करम प्राप्त होवे, गुरमुख विरलै किने त्याया। श्लोक महला तीजा।

की खबर ना पाई, अखी मीड चलिया अंधेरा, हर दर्द से ना पाई, जम दर बादा ठौर न पावे अपना किया कमाई, नदर करे ताए अखी वेखा कहना कथन ना जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही अमृत हृदय वसाई, निरपो निरंकार निर्वैर पूर्ण जोत समाई, नानक गोविंद परम ना पागै सच नाम वड्याई, सोरठ महला पहला दो चुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन चार कुंड चौबारा, सगल पवन की मूर्त एका मुख तेरे टकसाला, मेरे साहेबा तेरे चूज वेड़ाना जल थल।

मन रे समझ तम मत लागा, नाम सार अनस लूप हन फिर पछताए अपागा रखाओ। आपत को हरख जाद को रोवे, ए दुसुख ना लेन लागा, आपे दुसुख भोग पुगावे, गुरमुख सु अनरागा। हरस ऊपर अवर क्या कहिए, जिन पिया सो तृप्तागा, माया मोहित जिन इव रस खोया, क्या साकत दुर्मत लागा। मन का जियो पावन पात देही,

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाए। नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे, करे अंदर सच पाए।

तब तपे आपे सदगुर आप गए चेला उपदेश करे प्रभ आपे आपे नाउज पाइंदा प्यारा आपे ही जप जापे आपे अमृत आप गए प्यारा आपे ही रस आपे आपे आप सलांदा प्यारा जन नानक हारस तापे सोरठ महला चौथा आपे कंडा आप तराजी प्रभ आपे तुल तुलाया आपे सौ आपे बणजारा आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर घर त्याए सुख पाया हर घर नाम निधान।

संत संगजा का मन शीतल, ओ जाने सगली ठंडी। होमे रोग जा का मन व्यापत, ओ जन्म मरे बिल लाती। ज्ञान अंजन जा की नेत्री पड़िया, ताको सर परगासा। अज्ञान अंधेरे सू सनाही, बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने, नानक इहो सुख मांग है। जय कीर्तन तेरा साधु गावे, तय मेरा मन लागे। सोरठ महला पंजवा, तन संतन का तन संतन का, मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया, सर्व कुशल तब थिया। संतन बेन अवर न दाता बिया, जो जो शरण परे साधु की, तो पार ग्रामी किया रहाओ। कोट पराध मिटे जन सेवा, हर कीर्तन रस गाई है। ईगा सुख आगे मुख उजल, जन का संग बड़ भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण, जन की केत की उपमा कही है। अगम गोत्र सद अबनासी, शरण संतन की लई है। निर्गुण नीज अनाद अपराधी, ओर संतन की आही। बूढ़ तमोग्रे अंध कूप मह, नानक लेहो निवाही। सोरठ महला पंजवा कर पहला, जाके हृदय वसिया तू करते। ताकि तैं आस पुजाई, दास अपने को तू विसरे नाही। चरण तूर मन पाई, तेरी अकथ कथा कसन ना जाई। गुण निधान सुखदाते स्वामी, सबते ऊंच बढ़ाई रखाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई। सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देख आघाई। सर्व निरंतर तुम्हें समाने, जा को तुधे आप बुझाई। गुर प्रसाद मिट्यू अज्ञाना, प्रगट पय सवठाई। सोई ज्ञानी सोई ध्यानी, सोई पुरख सुपाई। कहो नानक जिस पय दयाला, ताको मन ते बिसर न जाई। सोरठ महला पंजवा, सगल समग्री मोहे व्यापी। कब ऊचे कब नीचे, शुद्ध न होइगे काहू जतना। ओड़क को ना पहुँचे मेरे मान, साध शरण छुटकारा। बिन गुर पूरे जन्म मरना रही, फिर आवत बारो बारा रगाओ। वो जो परम पुलावा कहियत, तिन में उर्जो सगल संसारा। पूर्ण भगत पुरख स्वामी का, सर्व थोग ते न्यारा। निंदो नाही काहू बाते, यो खसम का किया। जाको कृपा करी प्रा मेर है, मिल सा संत नवलिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुर, सबना करत उधारा। कहो नानक गुर बिन नहीं तरिय, त्यो पूर्ण तत् विचारा। सोरठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचार्यो। राम नाम ता सारा, किलभ काटे निमख आराध्या। गुरमुख पार्यो तारा, हर रस पीवो पुरख ज्ञानी। सुन सुन महा तृप्त मन पावे, साधु अमृत बानी रगाओ। मुगत भुगत जुगत सज पाई गे, सर्व सुखां का दाता। अपने दास को भगत दान देवे, पूर्ण पुरख विधाता। श्रमणी सुनिए रसना गाइये, हृदय त्याइये सोई। करण कारण समरथ स्वामी, जाते बिरथा ना कोई। वडे भाग रतन जन्म पाया, करो कृपा कृपाला। सा संग नान गुण गावे, सिमरे सदा गोपाला। सोरठ महला पंजवा, कर स्नान सिमर प्रव्यापना। मन तन पय अरोगा, कोड विघ्न लाते प्रसरणा। प्रगटे पले संयोगा, प्रबाणी शब्द सुपाखिया। गावो सुनो पढ़ो निद पाई, गुरपूरे तू राखिया रहाओ। साचा साहेब अमित वडाई, भगत वशल दयाला। संतां की पैज रखदा आया, आद बिरद प्रतपाला। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो, सर्व वेला मुख पावो। जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोविंद नित गावो। तुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बण आई। प्रगट पई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडे।

आदि। एक पिता एक के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई, तुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन दियो दिखाई, सुन मीता तूरी कौ बल जाई, यो मन तेरा पाई रहाओ, पा मलोवा मल मल तोवा, यो मन तय को दिशा।

सेजन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस दिन अमस्या ती नर त्रिसंतर खाई हर आराध्य अरोग अनदाई जिसनु मिसरे मेरा राम स्नेही इस लाख बेदन जने आई रघाव जे जन ओढ़ गही प्रातेरी से सुविए प्रसरणे जे नर बिसरिया पुरख बेधाता ते दुखिया मैं गणने जे गुरमान प्रभु लिवलाई ते मां आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुरते बेमुखाई ते नरक कोर में परया जित को लाया तित घी लागा ते सो ही वरतारा नानक सह पकड़ी संतन की हृदय पय मग चरणारा तोरठ महला पंजवा राजन मैं राजा उरझायो मानन मैं अभवानी लोभन मैं लोभी लोभायो क्यों हार नरचे ज्ञानी हर जन को ई सुहावे ते निट कर सेवा सदगुर हर कीर्तन ही तृप्तावे रहाओ अमल सो अमली लबटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कहलीना प्रसंत से हितकारी विद्या में विद्यं सीरतिया नयन देख सुख पावे जैसे रसना साध लुभानी त्यो हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी कापूर सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रा मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवा हम मैले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चदर सियाने

माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सब बलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूर्ण पैज सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उधरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नांग प्रभ अपना हंद से ती कर आया सोरठ महला पंजवा प्रभ की सारण सगल पैला थे दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी

गुर गोपाल प्रसोई, जा की शरण पया सुख पाई है, बहुत दुख ना होई रहाओ। वड भागी सा संग परापत, तिन पेट दुर्मद खोई, तिन की तूर नानक दास बांछ है, जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महला पंजवां, जन्म जन्म के दुख निवार, सूखा मन साधार, दर्शन पीड़ित होत निहाला, हर का नाम विचार, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देव है, काटे जमकी फंदा रखाओ। समर्थ पुरख पूर्ण विधाते, आपे करने हारा, अपना दास हर

मिले स्वामी प्रीतम अपने, हर मंदिर सुखदाई, हर नाम निधान नान जन पाया, सगली इश पुजाई। सोरठ महला पंजवा, गुर के चरण बसेर पीतर, शुभ लखन प्रवकी ने, हे कृपाल पूर्ण परमेश्वर, नाम निधान मन चीने, मेरो गुर रखवारो मीत, दून चौनी दे वड़ियाई, हो बानीता नीत रहाओ, जी जन प्रसगल उधारे, दर्शन देखन हारे, गुर पूरे की अचरज वड़ियाई, नानक सद भले हारे। सोरठ महला पंजवा, संचन करो नाम तन निर्मल, तति अगम अपार, बिलश मनोद आना सुगमानो, खाए जीवो सिख परवार, हर के चरण कमल आधार, संत प्रसाद पायो सब भोयत, जड़ लंगो बिग संसार रघाव। है कृपाल पूर्ण अविनाशी, आपे की निसार, पेग पेग नानक बिसानो, नानक नहीं सुमार। सोरठ महला पंजवा, गुरपूरे अपने कलतारी, साब का उपजी दया, आपे वेल वडाई कीनी, कुशल खेम सब पया, सदगुर पूरा मेरे नाल, पार ब्रह्म जस सदा निहाल रघाओ। अंतर बार थन थनंतर, जल कर पेखो सोई, नान गुर पायो वड़ पागी, ते जेवड़ अवर न कोई। सोरठ महला पंजवा, सुख मंगल कल्याण सहज तोन, प्रभु के चरण निहारिया, रखन हारे राखो बारक, सदगुर ताप उतारिया, उबरे सदगुर की शरणाई, जाकी सेवना बिरती जाई रखाओ। कर्म सुख वार पुन सुखा, प्रभ अपने पय दयाला, नानक बिघन ना लागे को, मेरा प्रभु वा कृपाला। सोरठ महला पंजवा, साधु संग पया मन उद्यम, नाम रतन जस गाई, मिड़गी चिंता सिमर अनंता, सागर तरिया पाई, हृदय हर के चरण मसाई,

गोविंद पेटे गुर गोसाई रहाओ। आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा, लभदे अपनी पाई ता कते आवे कद जाई। ते साच न्याय नबेरा, ऊखा समठा गुर समचेरा, अंतर जामी जाने बिन बोलते आ पछाने। सर्व थान को राजा ते अनहद शब्द अगाजा, तिस पै क्या चतराई, मिल नानक आप गवाई। सोरठ महला पंजवा, हिरदय नाम सायो, कर बैठे गुरु त्याय हो, गुर पूरे सत कहया, सो सुख साचा लहया। अपना होयो गुर मेहरवाना, आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों, कर आए कर स्नाना। रहाओ साची गुर वडियाई, ताकि कीमत कह न जाई। सिरसाहा पातशाह उर पेड़ मन ओ माहा, सगल पराजित लाथे मिल साह संत कै साथे। गुण निदान हर नामा, जप पूर्ण होए कामा, गुर कीनो मुक्त द्वारा, फलसिट करे जयकारा। नांग पा मेरे साथे, जन्म मरण पै लाथे। तोरठ महला पंजवा, गुर पूरे कृपा तारी, प्रा पूरी लोच हमारी, कर स्नान गृह आए, अंध मंगल सुख पाए। संतो राम नाम निस्तरीय, उठत बैठत हर हर त्याईय, आन दिन सुकृत करिय रहाओ। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड पागी पाए, कोड जन्म के किल विखनासे, हर चरणी चित लाए। उस्त करो सदा प्रव्यापने, जिन पूरी कल राखी, जी जन स पय पवित्र, सगुर की सच साखी। बिघन मिनासन सब दुख नासन, सदगुर नाम दृढ़ाया, खोए पाव पय सा पावन, जन नान सो कर आया। सोरठ महला पंजवा, साहिब गुनी गहेरा, कर लस्कर सब तेरा, रखवाले गुर गोपाला, सब जी पय दयाला। जाप अंदर हो गुर चरणा, पौ कते नहीं प्रसरणा। रहाओ तेरिया दासां रिदे मुरारी, प्रभ अवचल नीब उसारी, बाल तन तकिया तेरा, तू पार उठा गुरु मेरा। जिन जिन साह संग पाया, तो प्रभ आप तराया, कर कृपा नाम रह दिया, खुदल खेम सवतिया। होए प्रभु सगाई, सब उठला गी पाई, सास सास प्रभ त्याई है, हर मंगल नानक गाई है। सोरठ महला पंजवा, सोग सहज आनंदा, प्रा मिलियो मन पाबंदा, पूरे गुर कृपा तारी, तांगल पई हमारी। हर की प्रेम भगत मन लीना, नित बाजे अनहत बिना। रखाओ हर चरण की ओर सतानी, सचू की कान लुकानी, जग जीवन दाता पाया, हर रसक रस गुण गाया, प्रकाट्या जमका फासा, मन पूर्ण होई आसा। जय पेखा तै सोई, हार प्रभन अवर न कोई, कर कृपा प्रभ राखे, साब जन्म जन्म दुख लाथे। निर्भव नाम त्याया, अटल सुख नानक पाया। सोरठ महला पंजवा, ठान पाई करतारे, ताव छोड़ गया परवारे, गुरपूरे है राखी, तरन सचे की ताकी। परमेश्वर आप हुआ रखवाला, सांत सहज सुखिन में उपजे, मन हुआ सद

सगली बात सुवारी। प्रभ अपना बिरध समारिया, हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया, गुर का सद पयो साखी तिन सगली लाज राखी। बोलाया बोली तेरा तू साहिब गुणी गहेरा, जप नानक नाम सा साखी अपने दास की पैज राखी। सोरठ महला पंजवा, विध करता पुरख खलोआ, वाल ना विंगा होआ, मज्जन गुर अंधा रासे, जप हर हर किल खनासे।

अपना प्रभु त्याए संत सरोवर नहावे खोजन परमगत पावे मरै न आवे जाई हर हर नाम त्याई यो ब्रह्मचार सो जाने।

पंजवां पार ब्रह्म निभागी पूरी ताई बात न रही या उरी गुर चरण लाए निस्तारे हर घर नाम सुम्हारे अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे माग पिता जो पाला रखाओ वड़भागी सतगुर पाया जिन जमका पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जब जी वैसे वड़भागा हर अमृत बाणी गावे साधा की तूरी नहावे अपना नाम आपे दिया प्रवकरण हार रख लिया हार दर्शन प्राण आधारा क्यों पूर्ण विवन विचारा हर कृपा अंतर जामी दास नानक शरण स्वामी सोरठ महला पंजवां गुरपूरे चरणी लाया हर संग सहाई पाया जय जय गीता सुहेले हर कृपा प्रा मिले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले वल पावो जी कै संग सहाई ही रखाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतत पुनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सा जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाइये बौड़ न जोनी पाइये जे देवै पुरख विधाता हर हस्त नहीं जाता जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरणी पाया सोरठ महला पंजवां गुरपूरे कीती पूरी रव रव रया पर पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म मिट्टो कुरबाना गुर के चरण कवल तारे बिघन ना लागे तिलका कोई कार्ज सगल सवारे हरहाओ मिल साधु दुरमत खोए पदत पुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सबला थे पाप कमाते गुण गोविंद ने तगाई है सार संग मिल त्याई है मान बांशित फल पाए गुरपूरा हृदय ते आए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवां दैद सदर मेघ कटा काट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैन तिर परदेश सिधायो हुण नहीं संदेश रो मायो।

रामदास त्रुवर नाते तब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर स्नाना गुर पूरे कीने दाना सब कुशल खेम प्रतारे सही सलामत सब थोक उबारे गुर का शब्द विचारे हरहाओ सा संग मल्ला थी पार ब्रह्म पयो साथी नानक नाम त्याया आद पुरख प्रापाया सोरठ महला पंजवा जिद पार ब्रह्म चित आया सो कर दी ये वसाया तो सागर गुर पाया ना सहसा सगल मिटाया हर के नाम की वड्याई आड़ पैर गुण गाई गुर पूरे ते पाई रहाओ प्रभ की अकथ कहानी जन बोले अमृत बाणी नानक दास वखाणी गुर पूरे ते जानी सोरठ महला पंजवा आगे सो गुर दिया पाछे कुशल खेम गुर किया सर्वनिधान सो पाया गुर अपना हृदय ते आया अपने सदगुर की वड्याई मान छे बल पाई संतो दिन दिन चढ़े सवाई रहाओ जी जसा पय दयाला प्रभु ने कर दीने सह सुपाय मिले गोपाला

गौरी लाती संग मिला लिया मेरे करत संत साध पैसा थी कर गए लीने सरपस दीने आपे आप मिलाया कहो नानक सर्व थोग पूर्ण पूरा सदगुर पाया।

सुख पुंचो मेरे पाई। सोरठ महला पंजवा, सुनो बेनंती ठाकुर मेरे जी जंत तेरे थारे। राख पैज नाम अपने की करन करा मनहारे। प्रभ जीओ खुशमाना कर प्यारे, बुरे पले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार सुमरा सुवा।

कैसी धर्म कौन फुन करई, कौन नाम गुर जाके सिमर हर सागर को तरई, कल में एक नाम कृपा निध जाहे जपे गद पावे, और धर्मता के सवनाहन हे विद वेद बतावे, सुख दुख रहत सा निर्लेपी या को कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर नानक दर्पण न्याय।

अब बेगल कह न जाई। हमारा परम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कथनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई, ताके हिरदे रहा सुमाई। गुर किंचित कृपा कीनी, सब तन मन दे हर लीनी। कहे कबीर रंगराता, मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा, समुंद बलोमन को माटा। ताकि हो बलोमन हारी, क्यों मिटैगो शाश तुहारी। चेरी तू राम न करस पतारा, जग जीवन प्राण।

चारो राजा राम को रास दे रस अनस बिसर जाही रहाओ। जान अजान पै हम बावर सोच असोच दिवस जाही। इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। तैयत आन अचरित अनकश समझना परे अपर माया। कैरवदास उदास दास मत पार हर कोप करो जी दया। सुख सागर सुर पर चिंता मन काम तीन बस जाके। चार पदार्थ अष्टदशा सिद्ध नवद करतल ताके। हर हर हर ना जपे रसना अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अखर माही। व्यास विचार कयो परमार्थ राम नाम सरनाही। सहज समाज उपात रहित फुन बड़े पग लिव लागी। कहे रविदास प्रगास हृदय तार जन्म मरण पै भागी। जौ तुम गिरवर तो हम मोरा जौ तुम चंद तो हम पै है चकूरा। माधवे तुमन तोरो तो हम नहीं तोरे तुम स्यों तोर तमन स्यों जो रह रहाओ। जौ तुम दीवरा तो हम बाती जौ तुम तीर्थ तो हम जाती। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी तुम स्यों जोर अवर संग तोरी।

पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा, बंके बाल पाग सिर डेरी, यो तन हुए को पसम की ठेरी, ऊंचे मंदर सुंदर नारी, आराम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कमीनी पांत कमीनी, ऊंचा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कहे रविदास तुम्हारा, चमरटा गांठ न जनई।

सास मास तब जियो तुम्हारा तुम्हें करा प्यारा नानक साहिब एव कहत है सच्चे परवद गारा जे तू किसे ना देही मेरे साहिबा क्या को कड्डे गहना नानक बिन वै सोग छिपाईए पुरब लिखे का लहना नाम खसम का चित न किया कपटी कपड़ कमाना जाम द्वार जा पड़ चलाया ता चलदा पछताना जब लग दुनिया रही गई नानक किस सुनिए किस कहिए पाल रहे हम रहन न पाया जीव ते हम मर रही है तनासरी मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए तप हे आओ जीड़ा बिल लाए फिर जसवारे सचा सोए तिस विसरिया चंगा क्यों होए हिकमत हुक्म न पाया जाए क्यों कर साथ मिलो मेरी माए रखाओ वखर नाम देखन कोई जाए ना को चाखे ना को खाए लोग बतीने ना पत होए ता पत रह आराखे जा सोए जै देखा तै रहा समाए तुद बिन दूजी ना ही जाए जे को करे कीते क्या होए जिसनु बगसे साचा सोए हुन उठ चलना मोत के ताल क्या मोह दिसा गुण नहीं नाल जैसी नदर करे तैसा होए बिन नदरी नानक नहीं कोए तनासरी मोहल्ला तीजा नदर करे ता सिमरिया जाए आत्मा द्रवे रहे लिवलाए आत्मा प्रात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे गुर प्रसादी पाया जाए हर सुचित लागे तिर काल ना खाए रहाओ सच सिमरे होवे प्रगास ताते बिखिया महे उदास सतगुर की ऐसी वडियाई पुत्र कलतर विचे गद पाई ऐसी सेक सेवा करे जिसका जीव तस आगे तरे साहिब पावे सो प्रवान सो सेवक दरगह पावे मान सतगुर की मूर्त हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए साचा साहिब कृपा करे

साच रते अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखे आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे होमे विच सवकार कमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धन बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर न कोए जिस

जो हर सेवे संत भगत तिन के सा पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी अरख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह न सको।

अखंड हो अनकबीरी समझाव हो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम की सजन सुहेले रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले तनासरी महला पंजवा पूजा वर्त तिलक इस नाना

स्वामी सा मसलत प्रवान रहाओ पद परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी चरण सरन नानक दास हर हर संति ए बिद जाति तनासरी महला पंजवा सगल मनोरथ प्रभते पाए कंठ लाए गुरु रखे संसार सागर में जल न दीने किने न दुत्तर भाखे जिन कै मन साचा विश्वास देख पे स्वामी की शोभा आनंद सदा उलास रहाओ चरण सरन पूर्ण परमेश्वर अंतर जामी साखेओ जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकुर राखेओ तनासरी महला पंजवा जय जय पेखो तय हजूर दूर कत हो ना जाई रब रहया सर्वत्र मैं मन सदा त्याई ईत ऊत नहीं बिछड़े तो संगी गनिये बिनस जाए जो निमुख मैं तो अल्प सुख भनिये रहाओ प्रतपाले अप्याओ दे कश ऊन न होई सास सास संभालता मेरा प्रसोई आशल अशेर अपार प्रभ ऊंचा जाका रूप जप जप करे आनंद जन अचरज आनूप साम देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अरादा नानक मंगे दान प्रभ रेन पग सादा तनासरी महला पंजवा जिन तुम भेजे तने बुलाए सुख सह

शरण गए प्रभु अपने, सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा, पर हर ना लोभ चूड़ निंद, ए भी करत गुदारी। मृत सिंह आस मिथ्या मीठी, ए टेक मने साधारी। सागत की आवरदा जाए बिरतारी, जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव। काम नहीं गावारी रहाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, ए बंधन छुटकारी। बूढ़ अंध नानक प्रकाड, साध जना संगारी। तनासरी महला पंजवा, सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना। शीतल तन मन शाती, रूप रंग सुख तन जी का। पार ब्रह्म उरे जाती, रसना राम रसायन माती। रंग रंगी

राम रहाव सिमर स्वामी प्रव्यपना निट न आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोर सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वस संतन का संग पावो सो अगर मेहमाना व्यापे आड़ पैर गुण गाओ स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यांत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बहुत जमना छापन तनासरी महला पनवा मांगो राम ते सब थोक मार्ग को जाचत श्रम पाईए प्रभ के सिमरन मोख रहाओ ओखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा सिंध सेव सज पाईए दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिनखा सिमरन फोक नानक जन्म मरण पै काटे तिन साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा बुझे हर कै नाम मां संतोख होवे गुरबचनी प्रभु लागे पूर्ण ध्यान रहाओ मां कलोर बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूर्ण होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया तुर करत नानक जन के पूर्ण काम तनासरी महला पंजवा जन की कीनी पार ब्रह्मसार निंदक टिकन न पावन मूले उड़ गए बेकार अरहाओ जय जय देखो तय तय स्वामी होए न पहुंचन हार जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत्सार करन हार खवाला होवा जाका अंत न पारावार नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काढ़े मार।

अंतरजामी नानक के स्वामी तरबत पूर्ण ठाकुर मेरा तनासरी महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार।

कृष्ण अगन प्रव्याप बुझाई नानक उदरे प्रव शरणाई तन्हा श्री मोहल्ला पंजवा। तृप्त भई सज भोजन खाया मन तरसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रखाओ अनक प्रकारी बस्तर उड़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ आस असवारी।

पड़ पड़ फूले चोटा खावे, बहुत सियाण आवे जावे, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेव करे समाए।

परम ध्यानी साच साचे भाव आनंद अनदन हरख साचा दुख किल विख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नामणु गावे गावन हार शब्द सुहावणु सारा हे साचे मन सदगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे देनी ता संगम सत सते आराध एकंकार साचा नित दे चढ़े सवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कहे सब कोय ए बड़े आखिए ओ मूर्ख नीच अजान समझा साखिए सच गुर की साखी अमृत भाखी जित मन मान्या मेरा पूज करे आवे विख लादे शब्द सचे गुर मेरा आखण तोट ना भगत भंडारी भार पुर रहे आसोई नानक साच कहे बेनंती मन मान जाए सच सोई।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करे प्रभ सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण किरस्यों प्रीत प्यारी पिर कर सोहे नार।

परमै नाही पगलग राम रहे सरनाही। तिनते पैर पैर ते करियां आप कटे तन छीजे। ताल अहेरी फिरे बदक ज्यों कहो कमन बिद कीजे। सोजन आमन लगा माल पिता भाई सुध बनता कहो को है का हरहाओ। जब लग जोत काया मैं बरत आपा पशु न बूझे। लालच करे जीवन पद कारण लोचन कशु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो मन के परमा। केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कह जाने ताको अचरज काहो। ज्यों जा जल में पैसन निकस त्यों तुर मिलो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का फोरा। जो तन कहसी तजे कबीरा रमैये।

जो होई इंद्र लोक शिव लोक के जेबो उसे तब कर बाहर आबो क्या मांगो जिसर नाही राम नाम रख मन माही रखाओ सोभा राज विभय बड़ियाई अंत न काहू संग सहाई पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इनते कहो कमने सुख पाया कहे तो कबीर अवर नहीं कामा अमरे मन धन राम को नामा राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई राम नाम सिमरन बेन बूढ़ते अधकाई अरहाओ बंता सुधे गृह संपद सुखदाई इनमें कुछ नागे तेरो ताल अवध आई अजामल गजगन का पद कर्म कीने ते उत्तर पार परे राम नाम लीने तूकर कूकर जोन परमे तऊ लाज न आई राम नाम शाड़ अमृत ताहे बेख खाई तज परम कर्म विदन खेद राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सदगुर प्रसाद गहरी करके नीब खुदाई ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधकाई जिन त्रेण थर मूंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्व करत हो बिरस जाए झूठी देही अरहाओ मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई पार है जोजन छद्र चले था देही गिरज ना खाई सर्व स्वयं की लंका होती रावण से अधकाई कहां पयो दर बंदे हाथी खिर में पई पराई दुर्वासा स्यों करत ठगोरी यादव ए फल पाए कृपा करी जने अपने ऊपर नाम जो हर गुण गाए तस बैरागन मोय बस कीनी पंचो का मिट नावो छत्र दोए परे अमृत सार बिख को मार कढावो पाचे भौर न आवन पावो अमृत बाणी कढ़ते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोए है शीना कर मिनत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो ये संसार ते तब ही छूटो जो माया नह लपटावो माया नाम गर्भ जोन का ते ता दर्शन पाओ इत कर पड़त करे जो जान तेन पौ सगल चुकाइए कहत नाम दो बार क्या परम हो ए संजम घर पाइये मार वाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला जो कुरंक निसनाद बालहा जो मेरे मन रामैया तेरा नाम रूढ़ो रूप रूढ़ो अतरंग रूढ़ो मेरो रामैया रहाओ जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बाज जैसे पवरला जो कोकल को अंब बालक त्यो मेरे मन रामैया चक्री को जैसे सूर बालक मान सरोवर हंसला जो तरणी को कंत बालक त्यो मेरे मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालक चात्रक मुझ जैसे जल थरा मछली को जैसे नीर बालक त्यो मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगर मुन चाह है बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरु नाम बालह त्यो नाम में मन बीठला पहल पुरगे पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानऊ हर हर नचंती नचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंदी मै सागरा रहाओ नाचंती गोपी जन्ना नैया ते बैरे कन्ना तर्क नाचा प्रमिया चा

तनाश्री भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अपतियार क्या कीजे पचनी तोर।

आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुनकर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मिल हो, गुर मिले हर ओ महाराम। तार कीर्त जस अगम अथाह, खिन खिन राम नाम गावा। मोको तार कृपा मिली गे गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा। मन राम ना पीना ले लाहा, किन किन भगत करे दिन राती। गुरमत भगत ओ महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा। मन तन जीत शब्द ले लाहा, गुरमत पंच दूत बस आवे। मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा। हर गुण गाय सदा ले लाहा, दीन दयाल कृपा कर माधो। हर हर नाम ओ महाराम, जप जग जीत जपो मन माहा। हर हर जगन्नाथ जग लाहा, तन तन वड्डे ठाकुर प्रा मेरे। जप नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी।

सो ही सोही पावो, आसा मनसा पूरो, जब प्रभ कहो गुर प्रसाद नानक मन वसिया, दुख न कबहू चूरो, बुझ प्रभ कहो जैत।

दूख आराधन दूख आराधन बिसरे ना काहू बेरा, नाम जबत कोर सूर उजारा बिरसे परम अंधेरा, थान थनंतर सब नहीं जाई जो दिसे सो तेरा, संत संग पावे जो नानक जिस बौर न होई है फेरा। जय तसरी महला पंजवा कार चौथा दो पदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आव मैं सुख पायो गुर आग, तजी स्यान बचिंत सारी अंग छोड़ो है त्याग, रहाओ जो देखो तो सगल मोय मोहियो तो शरण परयो गुर भाग, कर कृपा टहल हर लायो तो जब छोड़ी मोहरी लाग, तेरे ओ सागर पापक को जो संत फेटे वड़ भाग, जन नानक सर्व सो पाए मोरो हर चरणी चित लाग। जय तसरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान करा, त्रिड़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभु जीव माया करा, रहाओ काल जल अरमा जंजाला छुड़के जमे डरा, आयो दुख हरण शरण करना पत कयो चरण आसरा, नाव रूप पयो सल संग पंध पार परा, आप्यो पियो गातियो परमा को नानक अजर जरा। जय तसरी महला पंजवा जाको पहे गोविंद सहाई, दुख सहज आनंद सगल स्यों वाको व्याध न काई, रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा न व्यापे उनमाई, एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई, दया माया कृपा ठाकुर की से ही संत सुपाई, तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई। जय तसरी

जाको जोगी खोज तहारे पायो नाए ते पारा। तो स्वामी तुम निट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पामर नाम जगत में हर को कभू नाए संभारा। नानक शरण पर्यो जग बंधन राखो बिरद तुहारा। जय तसरी महला पंजवा शांत कर पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद। श्लोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अन दिन नीत। खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संगमीत। शांत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। इस मोहन लाल प्यारे हों फिरो खोजंतिया। ते दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे। नैन हमारे प्रे रंग रंगारे एक तिल फीना थीरीजे। प्रसो मन लीना ज्यो जल मीना क्यात विदिवे तसंतिया। जन नान गुर पूरा पाय तगली तिखा बुझंतिया। यार वे प्रेहबे सगिया मुँह कई ना जइया। यार वे एक डू एक चाड़े होके चेतिया। एक डू एक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा। तिना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुणतासा। किन्नी मैंडा लाल रीझाय हौस आगे मन ढेइया। नानक कहे सुन बिनो सुहागन मूंद डिखा पिर कहिया। यार वे पिर आपन फाणा किश नी सी छंदा। यार वे तैराव्या लालन मूह तद संदा। लालन ते पाया आप गवाया चेतन भाग मथाणे। बां पगड़ ठागर हो कि दी गुण अवगुण ना पछाणे। गुण हार ते पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बू के सुहंदा। जन नानक तन सुहागन साई जिस संग पतार वसंदा। यार वे नित सुख सुखेंदी था मैं पाई। वरलोड़ी दा आया वजी वाधाई। महामंगल रहसतिया फिर दयाल सदना वरंगिया। वड़ भाग पाया गुर मिलाया साध के सत्संगिया। आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मिलाई। बिनवंत नानक सुख सुखेंदी था मैं गुर मिल पाई। जय तसरी महला पंजवा कर दूजा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कसन न जाए अकत। नांग प्रसरणागति राखन को समरथ। शांत जो जानो त्यों राख हर प्रो तेरिया। केते करो असंख अवगुण मेरिया। असंख अवगुण खते फेरे नित प्रसर फूलिए। मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी कूलिए। लोक करत विकार बिखड़े प्रभ नेर हूते नेरिया। बिनवंत नांग दया तारो ताड़ पव जल फेरिया। श्लोक निरतन पवे असंख गुण

इड़तन रूपहीन किज साक न सिन्ना राजा सगली सिटका हर नाम मन पिन्ना इसकी तूड़ मन उधरे प्रभ होए सो प्रसन्ना तलोक अनक लीला राज रस रूपं छतर चमर तख्त आसन रचंत मूढ़ अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हावरंग माणिया मिठा लगड़ा मोह नानक नाम विहूणिया सुंदर माया त्रोह पौड़ी सुपने से चित मूर्ख लाया बिस्तरे राजरस कोक जागत पखलाया आर जा गई वेहाय तंदे ताया पूर्ण पय ना काम मोया माया क्या वे चारा जंत जा आप पुराया श्लोक संत स्वर्ग लोक है जिद ते प्रथमी नव खंडन है विसरंत हर गोपाल है नांग ते प्राणी उद्यान परमण कौतक कोड़ तमास चेतन आवस नाओ नानक कोड़ी नरक बराबर उजड़ सोई थाओ पौड़ी महापयान उद्यान नगर कर मानिया टूड़ समगरी पेख सद कर जानिया।